नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के एक केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख

को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सफलता किसे कहते हैं? जिंदगी में कामयाबी का हिसाब कैसे करते हैं आप? पद से, पहचान से, पैसे से या पुरस्कार से? किसने कितना कमाया उससे, या किसने कौन सा मुकाम हासिल किया उससे, या फिर किसने कितनों को सपने देखने की वजह दी, कितनों को खुद पर यकीन करना सिखाया, कितनों को अपने देश पर गर्व करने का मौका दिया? कुछ हफ्ते पहले चोट से जूझती ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की बैडमिंटन जोड़ी को शायद ये लगने लगा होगा कि 2026 उनके करियर का सबसे नाकाम साल है। इंजरी के चलते ना एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके, ना प्रतिष्ठित उबर कप में। लेकिन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में उम्मीदों के विपरीत भारत के लिए मेडल जीत उन्होंने इतिहास रच डाला। भारतीय फैंस ने बुधवार को लक्ष्य सेन की हार देखी। गुरुवार को देश की दुलारी पीवी सिंधु और युवा सितारे आयुष शेट्टी को टूर्नामेंट से बाहर होते देखा। शुक्रवार को अपना क्वार्टर फाइनल मैच हार गोल्डन बॉयज की जोड़ी यानी सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। इसके बावजूद शनिवार को नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आठ हजार से ज्यादा दर्शक ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की उस जोड़ी को देखने आए थे जिन्हें टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोई उम्मीदवारों की गिनती में भी नहीं रख रहा था। आखिर शुक्रवार को इन्होंने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद वुमेन्स डबल्स में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। पिछली बार ये कारनामा 2011 में अश्विनी पुनप्पा और ज्वाला गुट्टा ने किया था, जिनको ट्रीसा अपना रोल मॉडल मानती हैं।
1: They are one of the idols for us, the women's doubles that they made created histories in India.
0: BWF World Championships 2026 में ट्रीसा और गायत्री का खेल देख अश्विनी पुनप्पा भी प्रभावित हुई। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा,
1: Both Gayatri and Trisa can rotate well. Gayatri has smart smashes that she plays from the back of the court. Incredibly sharp at the net. Trisa, powerhouse from the back of the court. Moves into the net. Also can take the pace off from the net. Overall game, very solid from both Gayatri and Trisa.
0: शायद सफलता का एक पैमाना ये भी है, जब आपके आदर्श आपके गुणगान गाने लगे तो कामयाब हैं आप। हालांकि सेमीफाइनल में पहली वरीयता प्राप्त टान निंग और ल्यू शेंग शू की जोड़ी के सामने भारतीय जोड़ी अंडरडॉग थी। लेकिन शायद वो क्वार्टर फाइनल में अपने से कई ज्यादा मजबूत चीनी जोड़ी को हराने वाली ट्रीसा और गायत्री की परफॉर्मेंस थी जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदें परवान चढ़ा रखी थी। बार बार स्टेडियम पुलेला पुलेला जॉली गुड के नारों से गूंजता। और गड़गड़ाती तालियों के बीच इन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की, 7-2 से प्रतिद्वंद्वियों को पिछाड़ा। लेकिन टान और लियू की चीनी जोड़ी जिसका लोहा दुनिया मानती है कहां पीछे रहने वाली थी। 9 पॉइंट लगातार हासिल कर उन्होंने मैच का रुख बदला और ऐसी चीख पुकार के साथ हर पॉइंट का जश्न मनाया जो छत से उतरती भारतीय फैंस की खामोशी को चीरती चली गई। दर्शकों ने

0: फिर भी गायत्री और ट्रीसा का उत्साह वर्धन करना नहीं छोड़ा। और भारतीय जोड़ी ने वापसी भी की। 24 मिनट तक चला ये पहला सेट किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर जैसा था, उतार चढ़ाव से लबरेज। अंततः गायत्री और ट्रीसा ने इसे 21-18 से जीत 1-0 की बढ़त हासिल की।
1: Playing with this Chinese pairs, I feel like we were bit more confident in the first game. Even when we were leading in the first half, then they covered into 11-7, they just took the break. And again, we covered them. We catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them.
0: दूसरा सेट भी उसी तर्ज पर शुरू हुआ। मिड गेम ब्रेक तक गायत्री और ट्रीसा 11-10 से आगे थीं, पर फिर जैसे उफनती नदी अचानक सूखने लगी, रफ्तार भी थमती चली गई। अभी तक कुछ बेहतरीन क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट्स का मुजाहिरा कर पॉइंट्स जीतने वाली ट्रीसा से उन्हीं शॉट्स को खेलने में गलतियां होने लगी।
1: बट इन द सेकंड गेम वी डिडंट गेट द रिदम, आई फील लाइक इन द आफ्टर द सेकंड गेम सेकंड हाफ, आई फील लाइक दैट टाइम द फ्यू मिस्टेक दैट मेड अस लिटिल बिट अनकॉन्फिडेंट, आई फील लाइक लिटिल बिट काइंड ऑफ डाउटफुल अबाउट एवरी स्ट्रोक्स व्हाट वी आर प्लेइंग, आई फील लाइक या।
0: गायत्री से भी कुछ मौकों पर चूक हुई।
2: वो लोग काफी पेशेंटली खेले, वी कुडंट मैच बोथ ऑफ दोस थिंग्स। थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे, पर रिदम नहीं आया।
0: और चीनी जोड़ी ने भरपूर फायदा उठाते हुए 21-13 से दूसरी गेम जीत मैच में बराबरी हासिल की। तीसरी गेम में टान और ल्यू ने दिखाया कि वो क्यों वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है, और 21-8 से उसे जीत फाइनल का टिकट बुक कर लिया। कोच गोपीचंद पुलेला कोर्ट साइड पर मौजूद थे। मैच के बाद उन्होंने माना कि उनकी शिष्याओं से गलतियां हुई, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया कि चीनी जोड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया।
3: Still the second game mid part they were quite there in the match and suddenly they didn't contact the shuttle as much and then they just lost it. But also credit to the Chinese girls because they were serving very well because there was a good amount of spin and tumble on the serve and then on the first return they were hitting very hard on the parallel. So I think Gayatri's and Teresa's chance of getting on the attack from the very beginning was not happening. But overall happy with the way they've played.
0: जब चीनी जोड़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से तो वो इस मुकाबले के लिए तैयार थे ही, पर उसके साथ भारतीय फैंस की जन गर्जना का भी उन पर कुछ ज्यादा असर हुआ
4: नहीं।
5: Play with them. We had to make specific plans, strategies to play against them. They will get support from the home crowd. So it was a very normal thing for them.
0: Trisa और गायत्री को भले ही कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा हो, उनके इस एकमात्र पदक ने भारत के लिए एक कमाल का कीर्तिमान स्थापित किया है। 2011 से हर साल BWF World Championships में कम से कम एक पदक जीतने वाले सिर्फ दो देश हैं, चीन और भारत। और कितने युवाओं को सपने देखने की वजह दी है, कितनों के दिलों में उम्मीद जगाई है, ये हौसला दिया है कि वो भी विश्व स्तरीय मंच पर कुछ कर सकते हैं, उसका कोई माप नहीं। शायद इसलिए इस हफ्ते उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा भी भारतीय सरकार ने की है।
1: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just needs to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
0: इस कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सो ही की जोड़ी ने जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश पाया है। वहीं पुरुषों के सिंगल्स में पहला सेट हारने के बाद फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मजबूत वापसी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। लेकिन फाइनल से पहले जज्बातों में बह जाने और जश्न मनाने से एलेक्स ने साफ इनकार कर दिया।
6: I mean, I don't feel that emotional at the moment. I think I'm a little bit too tired, but I'm also proud of the way I managed that match. Also, mentally, I'm not really thinking how big it is. We haven't done the tournament yet, so definitely I'm still in the tournament and I don't want to think about any kind of historical aspect or anything.
0: उनसे हारने वाले विक्टर लाई को कांस्य पदक मिला है, जो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दूसरा पदक है।
6: Of course, I'm really proud to have another world's medal. Not everyone can say that they have two, so I'm really proud, first of all. Hopefully we're inspiring some young kids.

0: From our countries.
1: Alex का सामना फाइनल में जापान के कोडाई नारोका के साथ होगा। महिलाओं के सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची और दक्षिण कोरिया से आने वाली मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग आमने सामने होंगी। पुरुषों के डबल्स में खिताबी भिड़ंत में होंगे मौजूदा ओलंपिक चैंपियन मलेशिया के एरन चिया और सो वुई यिक। उनसे भिड़ेंगे भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ देने वाले चीन के लियांग और वांग। मिक्स डबल्स में फ्रांस के गिक्वेल और डेलरू की जोड़ी चीन की फेंग और हुआंग की जोड़ी से भिड़ेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट लिए मैं दर्पण टिकिया।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HISTV और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने

0: कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता

0: प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मुंबई, वेलकम टू 107.1 एफएम रेनबो, जहां आ गया है आपका फेवरेट यमी ब्रेकफास्ट शो। जानती हूँ संडे की सुबह है, बहुत धीमी सी सुबह है ना, बहुत आराम वाली कि ओह इतनी जल्दी संडे आ भी गया और कल ऑफिस और स्कूल कॉलेज, क्यों याद दिला दिया ना, नहीं नहीं करेंगे बात। मैं हूँ आपकी आशना, मैं आपके साथ बने रहूँगी पूरे 11 बजे तक। 8:41 दिखा रही है घड़ी। शुरुआत करेंगे थोड़ी से ऐसे गाने के साथ जहाँ आप उठें, खिलखिलाएं, डांस भी कर लें, बस ड्राइव कर रहे हैं तो डांस नहीं करना, बाकी सब जगह चलता है। जिगर सरैया, प्रिया सरैया की आवाज़ों में आप सुनेंगे गुलाबी फ्रॉम द गुलाबी शहर। बात होगी उस शहर के बारे में भी, कहीं मजा ही, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम हैं म्यूजिकली यर्स।

गुलाबी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए कभी भी कहीं भी 24/7। संडे की सुबह हम यहाँ पर मस्त मुंबई में बात कर रहे हैं। आपको तो पता है संडे हम कहाँ जाते हैं, हम साथ चलते हैं, दुनिया भर की सैर करते हैं। पर मैंने सोचा ना ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अभी हम जो हैं यहीं हमारे देश में ही बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जो और ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं।

ज़्यादा प्यारी हो जाती हैं बारिश के बाद। तो चलेंगे धीरे धीरे, साथ चलेंगे, लेकिन किंतु और परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं जो जगह हैं बहुत अच्छे से सुबह सुबह जल्दी उठ के हमारा ये शो सुन रहे हैं उनके लिए एक सवाल है। अब ये शाम तो नहीं थी गुलाबी है तो सुबह सुबह, ये तो मैं जानती हूँ, पर हमारे देश में कैसा शहर है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है जिसे पिंक सिटी यानी जो गुलाबी शहर है उसके नाम से जाना जाता है, कौन सा है, क्या है, आप बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661071 पर। 1071 हमारा स्टेशन आईडी, 8657661071। सही जवाब देने वाले के लिए क्या है प्राइस, चलिए आपकी पसंद का एक गाना सुनवाएंगे, उसके साथ साथ उस शहर से जुड़ी, उस शहर के आसपास जो चीज़ें हैं खूबसूरत उससे जुड़ी बहुत सारी बातें होंगी। उससे पहले सुनते हैं अगला गाना अजय और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में धड़क का टाइटल ट्रैक, ओनली ऑन एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

एआर रहमान की कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर की कलम से निकले बोल, कविता कृष्णमूर्ति की रूहानी आवाज़ में आपने सुना फिल्म जुबैदा से धीमे धीमे। और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं वो है आपकी आशना की, जो आपके साथ बनी रहेगी पूरे 11 बजे तक। 8:55 दिखा रही है घड़ी। 107.1 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट एंटरटेनमेंट से भरा हुआ ब्रेकफास्ट शो मस्त मुंबई, जहाँ पे संडे के दिन हर सुबह, लाइक हर संडे की सुबह हम चल पड़ते हैं कहीं, क्योंकि हमारी जो संडे की थीम होती है वो आज चल के तुझे कहीं हम ले चले, फिर चाहे वो प्रवास हो, पर्यटन हो, कुछ किस्से कहानियाँ हो या किसी स्थल का ऐतिहासिक महत्व हो। तो मैंने आप सबसे इन दो प्यारे प्यारे गानों से पहले पूछा था कि हमारे देश में बहुत प्यारा सा शहर है जिसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, लेकिन अब हमारे पास टाइम इतना थोड़ा सा होता ना, तो आप सभी के फेवरेट गाने तो प्ले नहीं हो पाएंगे, तो हम ऐसे ही ना रैंडमली एक या दो, कुछ जैसे कहते हैं हमारे जो लकी विनर्स हैं उनके फेवरेट गाने उन्हें सुनाएंगे। लेकिन किंतु और परंतु आपको ये तो पता है कि मैं भी जो आपको गाने सुनवाने वाली हूँ बढ़िया ही होंगे, है ना। तो संडे की सुबह को एकदम धीमा प्यारा सा स्लो संडे करते हुए ऐसे ही धीमे धीमे से प्यार भरे कुछ और गाने आप तक पहुँच रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है। उसके पहले बता दूँ कि कुछ लोगों ने उस राज्य का नाम बताया, ना वो काउंट नहीं होगा, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने पूछा था कि कौन सा शहर है, सही जवाब मैं आपको बताऊंगी, पर ऐसे करते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। लेकिन उससे पहले एक और काम करते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम तक पहुंचाई है उनकी गुड मॉर्निंग जो है, रजनीकांत, महेश, गणेश, विजेंद्र, फिरोज, रंजीता, प्रमोद, सूर्यकांत और दिलीप, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एंड जिनके नाम नहीं आए हैं और उन्होंने सही आंसर दिया है, तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर सही है। अब पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अभी पूछें इस गाने के उस पार, चलिए इस गाने के उस पार जो है हम करते हैं। और ये अगला गाना भी जो है ना वो उसी खूबसूरत शहर में जो है वो पिक्चराइज हुआ था, और उस फिल्म की मेजॉरिटी शूटिंग उस शहर में हुई थी। चलिए बात करेंगे और आप सुनेंगे जावेद अली की खूबसूरत आवाज़ में चश्मे बहार फ्रॉम द मूवी जोधा अकबर, ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली यर्स।

मस्त मुंबई सुन रहे हैं आप 107.1 FM रेनबो पर। संडे की सुबह हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एंटरटेनमेंट से भरा है, तो ऐसे करते हैं कि हम चलते चलते, शायद अगर आप थक गए होंगे, अगर वहाँ पहुँचना है फ्लाइट ट्रेन से, वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो आप पता कर लोगे, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही हमारे प्यारे और स्मार्ट लिसनर्स ने हमें सही जवाब भेजा है, जिनमें है प्रदीप, विश्वास, दत्तात्रेय, प्रमोद, अजय, सुनीता काणे, राकेश, अंकित, पाटिल्स और राउत्स हैं तिगरेपाड़ा से, दीपा, प्रथमेश। तो आप सबके जवाब जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बदले में एक ऐसा एक बढ़िया सा गाना जो मिल बांट के हम जो है ना सब सुन लेंगे, है ना। करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम चल रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। संडे को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। आज के दिन यानी 23 अगस्त के दिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो मनाई जाती हैं, पर चाहे वो हैशटैग दिन हो या फिर इंटरनेट डे हो, मतलब अगर आप इंटरनेट की दुनिया के एस्ट्रोनॉट हैं, यानी कि आप अपना रास्ता और अपना नेविगेशन जो है वो बना लेते हैं बड़ी आसानी से, तो ऐसे लोगों के लिए एक दिन मनाया गया है ना। पता था क्या? मुझे भी नहीं पता था, थोड़े दिन पहले ही पता चला। यही तो होती है सबसे इंटरेस्टिंग सी बात। आप अपनी एप्लीकेशंस में जो हैं जाके गाने तो अपनी मर्जी से सुन सकते हैं, लेकिन जब आप किसी और की पसंद के गाने सुनते हैं और फिर सोचते हैं अरे ये तो बहुत दिनों बाद सुना है, बड़े हफ्तों बाद इस गाने को याद कराया गया, फिर आपको याद आता है कि अरे ये तो आपका कभी फेवरेट हुआ करता था। और इसी दिन विशेष के बीच में आज एक ऐसी फिल्म की एनिवर्सरी है जो आई थी 1996 में, 1996 में। तो अगला जो हमारा सवाल है वो ये है, चलिए मैं हिंट देती हूँ आपको, मुझे उस फिल्म का नाम बताना है और उसका हिंट बड़ा सिंपल है। जो एक्टर हैं जिन्होंने 2.5 किलो का हाथ और हैंडपम्प वाले डायलॉग्स दिए हैं, वो एक्टर उस फिल्म में थे और उनका एक आइकॉनिक डांस स्टेप जो है वो बड़ा फेमस हुआ था। इससे ज़्यादा आसान तो हो ही नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और ऐसे ही प्यारे से गाने को सुनेंगे। श्रेया घोषाल, गणेश चंदानी और शिवे, इन सभी की आवाज़ों में ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। बाजीराव मस्तानी से दीवानी मस्तानी।

वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो मस्त मुंबई में आचल के तुझे जा तो रहे हैं एक ऐसे शहर कहूँ या उस शहर के आसपास के कुछ ऐसे शहर जो बरसात में और बारिश के फौरन बाद इतना खूबसूरत इतना सुंदर हो जाता है। और ज़्यादातर जिन्होंने जो जवाब सही दिए उनके नाम मैंने आप तक पहुँचाए हैं। कुछ लोगों ने जो है दोबारा से मैसेज किया कि हमने तो उस राज्य का नाम बताया था लेकिन सवाल था कि शहर कौन सा गुलाबी है, तो वो है जयपुर जो राजस्थान में आता है। तो जिन्होंने भी राजस्थान कहा उनको पॉइंट्स तो नहीं दे सकते ना, पर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो एक नहीं दो नहीं पांच नहीं दस नहीं 25 से ज़्यादा जो है हिंदी फिल्में वहाँ पे शूट हुई हैं और इतना खूबसूरत इतना प्यारा। फिर चाहे आप जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, जैसलमेर, उदयपुर, जिसे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ फेमस किया गया या हम कहें वो है तो है ही खूबसूरत, झीलों का शहर भी कहा जाता है। और बारिश के फौरन बाद झीलें जब एकदम अपने एकदम हाई लेवल पर होती ना तो इतना सुंदर लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। तो एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले जिसका गाना मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। उस फिल्म के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो दौड़े दौड़े दौड़े पहुँच गए थे उदयपुर देखने के लिए। अपने आप पहचान जाएंगे कि कौन सी है। पर रही बात फिल्मों की तो फिर चाहे वो जोधा अकबर हो, बजरंगी भाईजान हो, रामलीला हो, बोल बच्चन, हाईवे या फिर खूबसूरत। हाईवे और खूबसूरत दो ऐसी फिल्में जो बीकानेर में जो हैं वो शूट हुई थी। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पैलेसेस हैं वहाँ, खूबसूरत महल हैं जिन्हें आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। और वहीं पहेली जो है जिसका गाना भी मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, एकदम चुन चुन के लिखे आई हूँ आपके लिए गाने, वो भी जो है शूट हुई थी राजस्थान में। तो अगर आप कहीं जाने का मन बना रहे हैं तो बारिश जो है वो धीरे धीरे अब जा ही रही है और चूँकि हम बात करते ही हैं तो पहुँच जाइए आप डोलते डालते बिल्कुल और पास में ही है महाराष्ट्र के, अगर आप मुझे महाराष्ट्र से सुन रहे हैं तो। और कहीं बाहर से सुन रहे हैं तो आपको पता है न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी 24/7। दो खूबसूरत गाने बैक टू बैक, उसके बाद ढेर सारी और बातें और ठीक 9:30 बजे यानी 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारा खास कार्यक्रम वतन का राग। और 10 बजे होंगे हिंदी में समाचार, फिर 10:02 से दोबारा करेंगे ढेर सारी बातें, बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने। आ गए हैं अरिजीत सिंह, साथ हैं हर्षदीप कौर, ये जवानी है दीवानी से कबीरा, ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपने सुना पहली फिल्म से गाना, गुलजार साहब की कलम से निकले ये बोल, और ये आवाज़ आपकी आशना की जो आपके साथ बने रहेगी पूरे 11 बजे तक। 9:23 दिखा रही है घड़ी, यानी कि वक्त हो रहा है हम मस्त मुंबई को यहीं समेटें। ठीक 9:30 यानी 9:30 बजे आप सुन पाएंगे हमारा खास कार्यक्रम वतन का राग जो पूरे 30 मिनटों का है। 10 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 10:02 से दोबारा लौट आऊँगी मैं, यानी कि आपकी आशना, लेके आपका फेवरेट प्रोग्राम नमस्ते भारत, जहाँ आज के दिन क्योंकि संडे है बात हो गई मेरा दिल मेरी बातें, लेकिन नहीं नहीं सिर्फ मेरा दिल नहीं और मेरी बातें नहीं, आपका दिल और आपकी बातें भी, जो आप हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। नंबर बहुत है आसान, 8657661071 8657661071। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चन का भी जवाब जो है वो सही दिया था, जिनमें कुछ लोग शामिल हैं जो हैं सरोज पाटिल, पंकज महौड़, हितेंद्र, कुछ लोगों के गुड मॉर्निंग आए, और कुछ लोगों के जो दूसरा सवाल है उसका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही दिया है हितेंद्र, यशवंत, श्रेय, चेतन, प्रमोद चंचोलकर, श्रीधर। तो आप सब ने जिन्होंने मैसेजेस किए, कुछ के सही थे कुछ के सही नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि नहीं, दामिनी नहीं है। हाँ, दामिनी के डायलॉग्स बहुत हिट हुए थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन बात हो रही है फिल्म जीत की, जो आज से बहुत बहुत बहुत साल पहले आई थी, और उसमें उनका एक सिग्नेचर स्टेप था सनी देओल का, जहाँ पे वो अपने हाथ के साथ ज़ोर ज़ोर से पैर पटक पटक के एक बड़ा क्यूट सा जो है डांस वो करते हैं, और वो फिर आने वाले कई सालों तक जो है एक उनका आइकॉनिक डांस स्टेप जो है वो बन गया था, और गाना था यारा ओ यारा। पर वो गाना नहीं सुन रहे, हम सुन रहे हैं एक और प्यारा सा गाना एक ऐसी फिल्म से जो, जी हाँ, जो राजस्थान में ही शूट हुई थी, क्योंकि आज जितने भी हमने गाने सुने हैं वो सब राजस्थान के अलग अलग कोनों में खूबसूरत लोकेशंस पे जा जा के जो है वो शूट हुई है। तो उम्मीद है कि ये प्लेलिस्ट आपको आई होगी पसंद। 10 से 11 के बीच में कुछ और है इंटरेस्टिंग, कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। 9:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारा खास कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 9 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की कहानी केवल बड़े बड़े आंदोलनों की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत कदमों की भी कहानी है जो गांव की पगडंडियों से उठे, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी सत्ता की आंखों में आंखें डाल वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्योंकि उनका एकमात्र स्वप्न था स्वाधीन भारत। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे गुलाब सिंह लोधी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जाना था कि डर कर जीने से बेहतर है देश के लिए निर्भय होकर मर जाना। उनका जीवन असाधारण साहस का प्रतीक है जो बताता है कि स्वाधीनता की मशाल यूं ही नहीं जली। ये मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची, किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने अपने कदमों से रास्ता बनाया और किसी ने अपने रक्त से उसकी लौ को जलाए रखा। वीर गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंडिका खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर राम रतन सिंह लोधी एक किसान थे। वो धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत स्वाभिमानी थे तथा कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपने पुत्र के भीतर निडरता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम के संस्कार डाले। जिस उन्नाव की धरती में उनकी परवरिश हुई वो भूमि बैसवाड़ा की गौरवशाली इतिहास और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राजा राव राम बख्श सिंह की शौर्य गाथा से स्पंदित रहती थी। ऐसे वातावरण में पलने के कारण बालक गुलाब सिंह लोधी के मन में देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे।

औपनिवेशिक भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश में गुलाब सिंह लोधी का बचपन बीत रहा था। उस दौर के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का घोर अभाव था। ब्रिटिश राज की नीतियां ग्रामीण शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं। गुलाब सिंह लोधी ने अपने गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद उनके भीतर गजब की बौद्धिक तीक्ष्णता और सामाजिक राजनैतिक समझ थी। अंग्रेजों के अत्याचार और किसानों पर मंडराते आर्थिक संकट को वो बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। इसके साथ ही तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं और लोक साहित्य के माध्यम से देश की राजनैतिक स्थिति और ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभावों पर भी उनकी दृष्टि थी। समय आगे बढ़ा और गुलाब सिंह लोधी पिता के साथ खेत में काम करने लगे। खेती किसानी के दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत के मातहत जमींदार और लगान वसूल करने वाले कारिंदे निर्धन किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया करते थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। 1920 का दशक भारत के स्वाधीनता इतिहास में अत्यंत उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देशव्यापी लहर पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी धारा के युवा अपने रक्त से आजादी की इबारत लिख रहे थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड ने देश भर के साथ साथ पूरे अवध क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों की चर्चा देश भर में थी। वीर गुलाब सिंह लोधी के मन मस्तिष्क पर भी इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव गांव गांव तक पहुंच रहा था। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। चरखा और खादी स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका था। वीर गुलाब सिंह लोधी समझ चुके थे कि इसी मार्ग पर चलते हुए

इसी बीच साल आया सन 1935। भारत का स्वाधीनता संघर्ष लगातार जारी था और ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नियम लागू कर रखे थे। उस समय तक गुलाम भारत के मन में अपने राष्ट्र ध्वज की आकांक्षा आकार ले चुकी थी। ब्रिटिश राज के विरोध स्वरूप झंडा सत्याग्रह शुरू हो चुका था और अलग अलग अवसरों पर लोग राष्ट्र ध्वज फहराकर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडे को फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। झंडा फहराना राजद्रोह माना जाता था और ऐसा करने वालों को असहनीय यातनाएं और सजा दी जाती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लखनऊ के मध्य स्थित अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 23 अगस्त 1935 का दिन तय हुआ। अंग्रेज सरकार को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, इसलिए सैकड़ों सशस्त्र पुलिस के सिपाही, पुलिस अधिकारी और घुड़सवार दस्तों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पार्क के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। किसी भी नागरिक को पार्क के भीतर तो क्या, आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। पार्क के बाहर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे के कारण कोई भी भीतर नहीं जा पा रहा था। जब पार्क के बाहर जमा सत्याग्रही पुलिस के कड़े पहरे को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, तब वीर गुलाब सिंह लोधी ने हार नहीं मानी। वो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपचाप झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह पुलिस को चकमा देते हुए वो पार्क के भीतर दाखिल होने में सफल हो गए। पार्क के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ था। वीर गुलाब सिंह लोधी बिजली की गति से उस पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने झंडे को बड़े जतन से छुपा रखा था। उनके पास बैलों को हांकने वाला एक डंडा भी था, जिसे पैना कहा जाता है। पुलिस बाहर भीड़ को रोकने में व्यस्त थी, जबकि गुलाब सिंह लोधी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच चुके थे। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने झंडा निकाला और पेड़ की शाखा पर झंडा फहरा दिया। हवा में लहराते झंडे को देखकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। पार्क के बाहर खड़े सत्याग्रहियों ने जब उनकी आवाज सुनी और हवा में लहराता झंडा देखा तो गगनभेदी जयकारों से आसमान गूंज उठा। ब्रिटिश अधिकारी बौखला गए। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वीर गुलाब सिंह लोधी की बांह, सीने और पेट में कई गोलियां लगीं। वो झंडे को संभाले हुए पेड़ पर खड़े थे और अंततः मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। 23 अगस्त सन 1935 को मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए भारत माता की गोद में ही वो बलिदान हो गए। आज वो पेड़ सत्याग्रह वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अमीनाबाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया है, जो आज भी वीर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान की गाथा सुनाता है। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। सुबह के 10 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकों नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। समाचार में आगे, दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर में कल गणपति प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और अंत में खेल जगत से, भारत और श्रीलंका

उनके ऊपर अगर कोई शो करना है या उनके बारे में अगर बात करनी है तो पूरा एक घंटा जो है वो भी है जो कम पड़ जाएगा, पर कोशिश है कि छोटी सी कोशिश की दो खूबसूरत गाने उनके इतने लंबे और खूबसूरत फिल्म करियर के मैं आप तक पहुंचाऊं। मैं बात कर रही हूं सायरा बानो जी की, जिनकी आज आप कहें जिनका आज बर्थडे है, 23 अगस्त 1944 को वो आई और आज वो अपना 82nd बर्थडे जो है वो मना रही है। मसूरी में ये पैदा हुई, उसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग डेब्यू की सिर्फ 17 साल की उम्र में और उसी फिल्म का गाना मैं आप तक पहुंचाऊंगी। 1961 में आई थी फिल्म शमी कपूर के साथ, जिसके गाने तो सुपर डुपर हिट थे ही और फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही, और आपने उन्हें देखा है कई और क्लासिक हिंदी फिल्मों में भी, चाहे वो विक्टोरिया नंबर 203 हो, पड़ोसन हो, शागिर्द हो या फिर जुग्या आजमा। तो बातें करते हैं अब धीरे धीरे साइड में और चलिए एंजॉय करते हैं दो गाने ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली ऑल्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो. और ऐसा गाना कि बस मैं इसमें खो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं आपको बताऊं कि हम चाह के भी जो है पूरे एक घंटे जो है ये गाने नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि और बहुत सारे 80s, 90s और लेटेस्ट गाने जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन बात हमने की सायरा बानो जी की, जिनका आज बर्थडे है, और 60s और 70s में वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड जानी मानी एक्ट्रेस, जिनका आज बर्थडे है. और इतनी सारी बढ़िया फिल्मों में उन्होंने काम किया, फिर चाहे वो ब्लफ मास्टर हो 1963 की आई हुई, पड़ोसन का तो हमने जिक्र किया है, और उसके गाने क्या बात है ना. और उनकी आखिरी फिल्म जो थी रिटायरमेंट से पहले 1988 में आई फिल्म फैसला, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से जो है वो विदा ले लिया. लेकिन एक से बढ़कर एक फिल्में और प्यारे प्यारे गाने. अब बात करते हैं एक और ऐसे शख्सियत की जो आज के दिन को, और हम कह सकते हैं

खास बनाते हैं, जिनके ऊपर दिन भर में बहुत सारी बातें होंगी। और वो लिसनर्स जो हम तक पहुंचा रहे हैं अपने रिक्वेस्ट डेडिकेशंस, में उन्हें याद दिला दूं कि दोपहर में 1 से 2 के बीच और शाम में 7 से 8 के बीच होता है रिक्वेस्ट आर। तो आप अपने फेवरेट जो आपके रेडियो दोस्त हैं जो इस पूरे दिन में आपको बारी बारी से मिलने वाले हैं, बता दूँ क्या कौन है या सरप्राइज रखते हैं, संडे सरप्राइज। चलिए थोड़ी देर में बताती हूँ। वो जो है वो आपके फेवरेट गाने, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डेडिकेशंस आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल 10 से 11 के बीच में रिक्वेस्ट आ रही है, बट कोशिश है कुछ अच्छे बढ़िया खूबसूरत गाने जो हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए। तो आज और किन की मैं बात कर रही हूँ, मेरा दिल मेरी बातें इस सेक्शन में, एक ऐसी आवाज़ जिससे जुड़ी बातें हम हर संडे की सुबह करते हैं, यूथ की आवाज़ जो बहुत ही जल्द हमें छोड़ के चली गई, कहते हैं ना समय से पहले चली गई। बात कर रही हूँ सिंगर के की। 23 अगस्त 1968 बॉर्न, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 31 मई 2022 को वो हमें छोड़ के चले गए। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु जैसे डिफरेंट भाषाओं में, तमिल और कन्नड़ में भी उन्होंने बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया जो हैं वो गाने गाए हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में ऐसी कि उन्हें इतने सारे नॉमिनेशंस मिले, हालांकि अनफॉर्चुनेटली उतने अवार्ड्स नहीं वो जीत पाए, लेकिन ऑलमोस्ट हर गाने के लिए उन्हें जो है वो नॉमिनेशंस मिले थे। और उनका ऑल टाइम फेवरेट गाना, जो हम सब का ऑल टाइम फेवरेट गाना हम कह सकते हैं, साल 2000 में फिल्म आई थी, जो 1999-2000 के बीच, हम दिल दे चुके सनम, उस फिल्म का वो कहते हैं ना द हार्ट ब्रेक एंथम, आज तक का वैसा गाना ना बना है, मुझे नहीं लगता कि वैसा बनेगा भी। पर मैं आपके लिए चुन के लाई हूँ 2 खूबसूरत गाने इन्हीं की आवाज़ में, 2 सुपरस्टार, 2 खान्स के गाने, सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्मों से। आप सुनेंगे ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

केके की रूहानी आवाज में बजरंगी भाईजान से आपने सुना ये गाना और ये आवाज आपकी आशना की जो आपके साथ बनी रहेगी पूरे 11 बजे तक। 10:22 दिखा रही है घड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए कभी भी कहीं भी 24/7। संडे की ये शाम कह रही थी, शाम का इंतजार करो। संडे की जो सुबह है हमने इतनी स्लो कर दी है ना, इतनी रूहानी सी कर दी है, आराम आराम से, और पूरा दिन भी ना बस ऐसे ही बीते। क्यों भाग रहे हैं? बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा थम जाते हैं। कुछ ऐसे ही और खूबसूरत गाने भी आप तक पहुँचेंगे, कुछ और बढ़िया जो हम बातें भी करेंगे। और जब हम मस्त मुंबई की बात कर रहे थे 8:40 से लेकर 10 बजे के बीच में, वहाँ बात कर रहे थे कि जहाँ हम राजस्थान की सैर तो कर ही आए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत समय है और बहुत ही अच्छा टाइम है इस समय वहाँ जाने के लिए, क्योंकि बारिश के बाद और ज़्यादा लश ग्रीन जो है वो हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आपको और थोड़ा दूर जाना हो तो फिर आप जा सकते हैं कहाँ, स्पीति घाटी जो है पहाड़ों में, है ना, याद आ गई वो दृश्य सामने आ गया, ऊंचे पहाड़, नीला सा आसमां है, रास्ते हैं, और अगर आपको रोमांच पसंद है तो बस बेस्ट है ये आपके लिए। यहाँ बर्फ़ कम होती है सितंबर में, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे सर्दियों के मौसम में जाएंगे तो बर्फ़ पड़ जाती है, रास्ते जो हैं उस समय उतने साफ़ नहीं होते जितने इस समय हैं। ठंडी हवा है, शांत है, सब कुछ एकदम माहौल जो एकदम खूबसूरत सा है। या फिर आप चले जाइए कुर्ग, जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत का स्कॉटलैंड है वो, बट मैं कहती हूँ नहीं, हमारा है, अपना है और खूबसूरत सा है। हरे भरे कॉफ़ी के खेत हैं, झरने हैं, हरियाली जो है वो एकदम ऐसे आप देख ही देख सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आसपास महाराष्ट्र में यानी जो इसके आसपास से मुझे सुन रहे हैं, आप सातारा जा सकते हैं, आप महाबलेश्वर जा सकते हैं, मालशेज जा सकते हैं। जो लिस्ट है ना इतनी लंबी चौड़ी है कि वो ख़त्म नहीं होगी, पर बस ध्यान दिला दिया कि संडे है, वीकेंड जो है अभी ख़त्म हो रहा है, बट आने वाले वीकेंड जो हैं उसमें आप बहुत सारी और ऐसी ही बढ़िया जगहों पर जा सकते हैं। बातें करेंगे और, क्योंकि मेरा दिल मेरी बातें सेम से जो है ऐसे ही दिल से निकली हुई बातें पहुँच रही हैं सीधा आपके दिल तक। आ रहा है बड़ा प्यारा सा गाना जाने तक गांधी की आवाज़ में, गिलहरिया, ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली यॉर्स।

0: रंगों में डूबी हुई रंगीन बातें,
1: मस्ती में उछलती खूबसूरत आवाजें,
2: म्यूजिक इंटरव्यूज और बेहतरीन तराने,
3: एंटरटेनमेंट का हब सुने हम सब।
4: मुंबई का नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का FM रेनबो आपका हम सफर, आपका हमराही, म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

प्रीतम की कॉम्पोजिशन, इरशाद कामिल की कलम से निकले बोल और जावेद अली की आवाज़ में आपने सुना सौदेबाजी फ्रॉम द मूवी आक्रोश। और ये आवाज़ आपकी आशना की जो बस थोड़ी ही देर के लिए आपके साथ है। बोल रही हूँ कि रुक जाए ये घड़ी, बट बोलते हैं ना कि टिक टिक करती रहती है, बस टिकती नहीं है, चलती चली जाती है, चलती चलती रही, बस जा ही रही है आगे। हालांकि संडे की सुबह जो है हम बात करते हैं नमस्ते भारत में, यानी 10 से 11 के बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स पर, कुछ ऐसे मुद्दों पर जहां युवा जुड़े हैं, युवा धन, उनकी बातें, उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियाँ। तो अगर आप एक नज़र ऐसे ही एक झलक में से सोचेंगे कि किस तरह की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, फिर चाहे वो शिक्षा की कमी हो, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, कई बार वो साधन जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं कि एक अच्छी शिक्षा मिले, या स्किल बेस्ड जो है वो नॉलेज हम तक पहुंचे, या फिर वो भटकाव हो, गलत रास्तों की तरफ हो, फिर चाहे वो नशा हो या सोशल मीडिया का बुरा असर, मतलब हर चीज़ की अति जो है वो बुरा तो करती है, या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो क्योंकि हम ध्यान तो दे नहीं रहे हैं, जो भी आ रहा है बाज़ार में बस खाए जा रहे हैं बिना देखे कि वो हमारे लिए अच्छा है भी या नहीं। और मानसिक तनाव, उससे जुड़ी एक बहुत ही दर्दनीय घटना कल हुई महाराष्ट्र के पास ही, और काफ़ी सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, पर उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले, क्योंकि वक्त को रोकने की कोशिश की जा रही है तो सोचा चलिए इस गाने से ही रोकने की कोशिश कर दी जाए। फरहान सईद की आवाज़ में हाफ गर्लफ्रेंड किया, हाँ, फिल्म से आप सुन रहे हैं। अगला गाना ओनली ऑन एफएम रेनबो, म्यूजिकली यॉर्स।

विनती तो बहुत करें, बस ठहर ही नहीं रही है। 107.1 FM रेनबो पे सुन रहे हैं आप नमस्ते भारत, जहां बात हो रही है युवाओं से जुड़ी कुछ समस्याओं की या चुनौतियों की, या हम कहें कि बस वो बातें जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। 10:58 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद ठीक 11 बजे आप सुन पाएंगे पोस्ट बॉक्स 111 हमारे दिल्ली केंद्र से 11 बजे से 12 बजे के बीच। एक घंटे का ये खास कार्यक्रम आप सुनने वाले हैं। इस प्रोग्राम में थोड़े से मिनट अभी और हैं, बातें भी हम करेंगे, कुछ बढ़िया सुंदर गाने भी जो हैं वो आप तक हम पहुँचाएंगे। अगला गाना जो आ रहा है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में है। वो कहते हैं कि कभी भी अलविदा नहीं कहते, इस फिल्म में बड़े खूबसूरत तरीके से वो बता भी दिया, क्योंकि अलविदा कहने से दोबारा मिलने की जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाती है। हम सुनेंगे टाइटल ट्रैक ओनली ऑन एफएम रेनबो। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं दिल से दिल तक।

कभी अलविदा ना कहना का टाइटल ट्रैक आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, और ये आवाज आपकी आशना की जिसके जाने का वक्त हो गया, क्योंकि जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे। मेरी और आपकी अगली मुलाकात होगी बहुत जल्द। फिलहाल घड़ी ने कह दिया है कि 10:53 हो गए और हम इस प्रोग्राम को यानी कि नमस्ते भारत को यहीं समेटें। इस गाने के उस पार मैंने आपको याद दिलाया एक ऐसी घटना जो हाल ही में हुई और बहुत ही दर्दनीय थी, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे के, उसके बारे में ज़्यादा कह के जो है मैं नहीं चाहती कि हम और दुखी हों। बस इतना कहना है कि कोई भी चीज़, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती है, वो हमेशा बस ध्यान रखिए। पैसे आएंगे, पैसे चले जाएंगे, मिल जाएंगे, आपकी और आपके अपनों की जो ज़िंदगी है, अच्छी सेहत है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को खुश रखिए और हमेशा बने रहिए FM Rainbow के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं दिल से दिल तक।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। 10:58 हो चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। भूमि पूजन समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल नवी मुंबई स्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान निफ्ट परिसर का दौरा किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने नवी मुंबई स्थित टेक्सटाइल रिसाइकलिंग फैसिलिटी का दौरा किया। श्री सिंह ने मुंबई में वस्त्र समिति के 62वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। समाचार में आगे, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3-4 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। मुंबई से लगे ठाणे, रायगढ़ और पुणे जिले में भी इस दौरान मौसम साफ रहेगा। और समाचार के अंत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त। हमारे खास कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के लिए बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: आकाशवाणी नंबर 111 पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार के रूप में आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दो भेंट वार्ताएं, जो ऐसे विषयों पर आधारित हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, अमृत सरोवर और कैच द रेन। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं इन विषयों के बारे में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: रही मन पानी राखिए, बिन पानी

0: एक अनूठा अभियान मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है, जो भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
1: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए देश भर में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: रजनी मैम, अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों, तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया।
3: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में JSJB जल संचय जन भागीदारी अभियान और मध्य शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान, ये प्रारंभ किए गए हैं। इन्हीं दोनों अभियानों के अनुक्रम में जिले में अमृत सरोवरों का ये काम प्रारंभ हुआ था और पिछले दो वर्षों में लगभग 63 अमृत सरोवर जिले में निर्माण किए गए। इन जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें, क्योंकि समय के साथ आप देखते हैं कई बार गाद भर जाती है या थोड़ा जल स्तर कम हो जाता है, तो इनका संरक्षण किया जाना, लगातार इनमें जल भराव इसका मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जब जल संचय जन भागीदारी का काम और कैच द रेन कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया, उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का, हम कहें, संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाएं, और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गाद निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई और इसके साथ ही, जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब, जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही, जो हम अगर तालाबों की बात करें, तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी एक तो कार्य पूर्ण किए जो अधूरे थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको, उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज, जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाए और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाए अपने जिले में।
1: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
4: देखिए, जहाँ तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे, एक ऐसी धारणा है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है, हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा, तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक

0: मैं बताऊं कि गोटे गांव जनपद में मेख में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहां के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए। बाद में वो फिर अतिक्रमण होकर और उसमें खेतियां होती रही, लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गांव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात है।
1: एक प्रशासक के तौर पे क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
0: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, वो भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा, लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास 6-6, 8-8 बोर है, वो असफल हुए, और लगभग 3-4 क्रॉप का जिला है। तो वो जब रवि से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ा, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारे जो इकाई हैं, सरपंच सचिव हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभिष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि माननीय मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं, उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात ये हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़कर सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया।
1: यानी कि एक समन्वित प्रयास रहा है पूरे जिले का, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। अमृत सरोवर और जल संरक्षण पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पहले हमारे अतिथियों की पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। रजनी मैम, कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: सावन का महीना है, तो हमें लगता है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, बहुत गाना रहेगा, अच्छा मुझे पसंद भी है।
1: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज की हमारी बातचीत का विषय है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में अमृत सरोवरों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में किया था। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा अभियान अमृत सरोवर और जल संरक्षण का आपने सफलतापूर्वक किया, इसमें अलग अलग व्यक्तियों का, विभागों का, समुदायों का किस प्रकार योगदान रहा है, कैसे ये समन्वय बनाया आपने?
1: नरसिंहपुर जिले में जेएसजेबी 2.0 और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि आपको जानकारी है कि कृषि प्रधान जिला है और बहुत उपजाऊ जमीन है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में तो कि एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन नरसिंहपुर जिले में है और बहुत लोग इसमें उसका उपयोग करते हैं, हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप के क्रॉप्स होते हैं। तो शासकीय जो भूमियां भी हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है, उनमें भी स्थानीय स्तर पर लोग संज्ञान में आए कि लोग कृषि कर रहे हैं, तो उससे जो और कृषि को लेकर इतना उत्साह है लोगों में, इतना लगाव है कि वो जरा सी भी भूमि, मतलब ऐसा है कि उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो और जैसा कि अभी सीओ साहब ने आपको बताया कि नर्मदा नदी हमारे यहाँ बहुत मतलब लंबा एक उनका क्षेत्र है और सारे घाटों पे आसपास ये खेती, लगातार खेती के कारण जो हमारा इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये सब समस्याएं हमारे सामने थी। तो हम जब ये अभियान आया तो हम लोगों ने एक इसको सबको एक होलिस्टिक प्लान इसको लेकर तैयार किया कि कैसे हम इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं वो सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे अमृत सरोवर है वो कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्पेसिफिक टोपोग्राफी होनी चाहिए या स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, वहीं बन सकते हैं और रिसोर्स की भी उसके लिए आवश्यकता होती है, तो जहां वो आवश्यक है वहां अमृत सरोवर, अन्य जगहों पर, कुछ जगहों पर हमने जो कंट्रोल ट्रेंचेस होते हैं, जो कंटिन्यूस या स्टगर कंट्रोल ट्रेंच होते हैं, वो बहुत सारे हमने लिए, क्योंकि ऐसी भूमियां जो बहुत समय से खेती के लिए उपयोग हो रही हैं उनको मुक्त करा के और वाटर कंजर्वेशन सुनिश्चित करना और दोबारा उसका उपयोग उस प्रकार से ना हो पाए, अतिक्रमण ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो जिले में हम लोगों ने हमारे सभी मतलब हमारे सीओ साहब और हमारे सभी रेवेन्यू ऑफिसर जितने हैं, तहसीलदार और एसडीएम्स, उनको एक सूची प्रोवाइड की गई और सभी सरपंचों की हमने लगातार 2 महीने बैठक की, मतलब व्यक्तिगत बैठक की सरपंचों की, सचिवों की, और उनसे ये जानकारी चाही कि कहाँ कहाँ पे कितनी भूमि उपलब्ध है और वो किस प्रकार से उसमें उपयोग हो रहा है। और फिर सबके सहयोग से हमने प्रयास किया, लगभग 900 एकड़ भूमि जिले में हम लोगों ने मुक्त कराई और उसमें से लगभग 450 एकड़ पे हमने कंट्रोल ट्रेंचेस निर्माण कराए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि भविष्य में एक तो वो खेती के लिए दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगी, दूसरा अगर हम उसके जल संरक्षण की बात करें तो लगभग 2 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एक वर्ष में वो संरक्षित कर पाएंगे जो हमारे कंट्रोल ट्रेंचेस हैं। जिस समय ये काम चल रहे थे उसमें नए कार्य जो हमारे उसमें नरेगा इसकी मनरेगा चल रहा था और जीवी राम जी आ चुका था, तो नए कार्य हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने इसमें जितने भी समाज के अंग होते हैं, चाहे वो पंचायतें हों, सामाजिक संस्थाएं हों, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, बड़े किसान हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, उन सब से मीटिंग करके सबसे मतलब ये सहयोग लिया कि जिसके पास चाहे मानव संसाधन हो, चाहे हमारे पास मशीनरी हो या अन्य तरह के रिसोर्सेज हैं जो उपलब्ध करा पाए वो हम उसमें करें। तो उसमें इन सब के सहयोग से आप मतलब हम लगभग 70,000 ट्रेंचेस बनाए हैं जिसमें बिल्कुल भी शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया गया। तो और इसके अलावा जैसे हमारे शासकीय स्कूल या प्राइवेट स्कूल, उनमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए, नगर पालिकाओं में हमने स्ट्रक्चर बनवाए। हमने ये प्रयास किया कि समाज के सभी अंग, चाहे वो शासकीय हो, निजी हो, उद्योग हो, स्कूल हो, संस्थाएं हो, सब मिलके अगर जिस भी स्थान पे हैं अगर वो ये देखें कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और सब अपने अपना प्रयास करेंगे तो हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। तो यही लगभग हमने 70,000 संरचनाएं जो जेएसजेबी बनाई है उसमें सभी प्रकार की संरचनाएं हैं और ये सबके मतलब हम कहें एक क्यूमुलेटिव सहयोग से ही हम ये अचीव कर पाए हैं जो भी स्थिति है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हम अगले सीजन में ही मतलब देख पाएंगे। हमने वाटर लेवल्स लिए हैं पंचायतों में, कुओं के, बोरवेल्स के लिए अभी कि अभी क्या है और संरचनाओं के बाद क्या स्थिति होती है, लेकिन निश्चित रूप से जितना जल हम, जैसे मैं बताया कि 2 करोड़ घन मीटर हमने ट्रेंचेस में किए, ऐसे लगभग 2 लाख घन मीटर हमारा जो तालाब है उनके माध्यम से, तो इस तरह से बहुत मतलब एक हम कहें सफिशियंट नंबर हम कहें जो हमारे जल संरक्षण में हम लोग इस बार प्रयास कर पाए।
0: जी जी गजेंद्र जी, जल संरक्षण संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
2: देखिए निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉन्ड को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया और वो जो उनकी क्रॉप निकल के आई वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फॉर्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से। और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज्यादा बेनिफिट करता है, तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते थे, अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहाँ पे कि खेतों का पानी

0: बाहर चला जाता था, उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं, सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
1: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हैं, किसी में पानी नहीं निकल रहा है। उसके बाद उनने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं और दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं, वहां उनको ही बोलें कि अपने अनुभव शेयर करें, जिससे अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहाँ उसका उपयोग करें।
2: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
0: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं। मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
2: जी जी,
0: श्रोताओं को अगर सुना सकें तो बहुत अच्छा।
2: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: और जल संरक्षण, जिसकी चर्चा जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में अतिथि विशेषज्ञ हैं श्रीमती रजनी सिंह और श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी। आप दोनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे थे वो पूर्ण हो गए, और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है। एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत हम उस वाटर टेबल में कहीं ना कहीं नीचे गए हैं। तो एक आम के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत इसको मानी जा सकती है। और ये अगर सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज्यादा उपादेय और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है। हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है। लगभग 146 किलोमीटर का तट है दोनों क्षेत्रों में मिला के, उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है। और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपने सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गांव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको, जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसी जमीनें हमने विधिवत फेंस करके सुरक्षित करें। कम्युनिटी को, विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को, उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें दे के एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉइल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गांव में बनी जहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, और अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजय विकचर, और खासकर अगर देहातों की बात करें, क्योंकि शहर में की तुलना में वहाँ कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा, वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में, डिस्पोजल के रूप में होता है, वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है। तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडेंट जोन को हम ज्यादा मजबूत करें, वानिकी और उद्यानिकी पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी की आजीविका बाधित हो, वो भी उपार्जन हो, महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है, और उसमें न केवल जन सहयोग, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रहीं, बेंच बनाने का काम किया। फिर बाद में उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गांवों में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
0: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवरों और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई, तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा आईएएस अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
2: देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम

0: सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है, जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, और आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सबके लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है। और इससे हमको और प्रेरणा मिली है, जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है, जैसे सीओ साहब ने बताया, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद, जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भूमियाँ हैं जहाँ हम लोग ने खाली कराई हमने, तो वहां पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं। और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े तालाब होते हैं, तो बहुत एक तो आप जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पर कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाए। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है जल संरक्षण का, जब आप संरचनाएं बनाते हैं उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं। तो हम लोग लगभग 500 एकड़ भूमि पे फेंसिंग करके उसकी प्लांटेशन की मतलब कुछ जगह 200 एकड़ पे लगभग कर लिया है, और बाकी आगे प्लान है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन से जिले को एक नई ऊर्जा मिली है और काम करने की, हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित हुई है, और विभिन्न माध्यमों से हमको जो बधाइयां मिली हैं मन की बात में नाम आने से, तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं। और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा सीओ साहब ने बताया वो है, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा,
1: बन सकता है।
0: तो हमारी योजना ये है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की मैक्सिमम स्कीम आरडी की होती है, तो स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है सभी, मैं कहूँ स्तर है समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है हमारा नाम जिले का लेके उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
2: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
0: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है, और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध है, वहां पे भी जल के संकट की स्थितियां आ गई हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीजें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्याएं जनता को झेलनी है उसमें उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है और पानी को लेकर कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन हमें अपने व्यक्तिगत, घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या हमारे खेत हैं, किसान हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि हम जो एक इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस भावना से काम करें। और अपना जो भी परिसर, जितना बड़ा भी घर है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर हमने जल संरक्षण का प्रयास कर लिया, तो एटलीस्ट हम एक एक छोटे छोटे प्रयास से, हम जानते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, बड़ी अच्छी कहावत है, तो हम सबको अपना व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। और और जो बड़े लेवल के प्रयास है वो तो शासन के माध्यम से हो ही रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। और हमने भी यही प्रयास किया है, जो हम लोगों ने अभियान चलाया उसमें हमने यही प्रयास किया है कि जैसे हमने लगभग 4000 SHG की महिलाओं के माध्यम से सोकपिट और बोरी बंधान के काम कराए जिसमें कोई राशि खर्च नहीं हुई।

0: बेसिकली इस पूरे अभियान का, या तो पंचायतों के माध्यम से या तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है, हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक हम कहें जन आंदोलन जैसा विषय है जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी, लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में प्रयास है कि हम ऐसे ही मतलब लोगों को जब भी हम किसी जगह जहां भी लोग होते हैं, जहां जन समुदाय होता है, चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस बिंदु को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय, व्यक्ति, सरकार सब मिलके जब काम करेंगे तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता, यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पोल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके का कारण से है। तो ये विषय ऐसा है जो हर तरीके से लोगों के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियाँ हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पर रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें, क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो
3: जी।
2: तो जो
3: जी।
2: स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पे जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहां जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा है
1: जी। बिल्कुल श्रोताओं, अमृत सरोवर, जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और श्री गजेंद्र सिंह नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हमें बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
4: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। कैच द रेन, अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी।

0: कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी अहमदाबाद।
1: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार हैं?
2: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहाँ के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की ओर विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई देने वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुया कि मेरी सौराष्ट्र की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहाँ की जमीनों में भी है और वहाँ के किसानों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20 30 40 फीट पे पानी था, वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100 200 500 1000, कहीं कहीं जगह पे तो 2000 फीट पे गहराई पे चला गया। वहाँ के किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो इस विषय की एक प्रेरणा मिली कि समस्या का रोल बहुत समझा। तो हमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है फिर भी पानी नहीं है, तो हमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया, क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहाँ की धरती पथराड़ और डूंगराल है, बारिश गिरती है, लेकिन वहाँ जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न हुआ ना हिसाबे 80 से 90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आ रही और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू किया लोगों को जोड़कर, ये पानी हम कैसे बचा पाए।
1: दिलीप भाई आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984 85 86 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी, तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
2: एक समय था, वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है, इस समय में क्या हालत थी कि वैसे कोई साधन भी नहीं थे, तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87, इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी, फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए। उसका एक विजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय में बस्ती भी कम थी, फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की, और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे, और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूत आई हुई, लोगों दो पैसा कामने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए, तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी, तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था गिर गंगा परिवार, जो हमने गायों के लिए तैयार किया था, और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने एक काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया, 2022 में हमने काम की शुरुआत की थी।
1: तो भरत भाई आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
3: पहली बार गिरगंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया प्रेसिडेंट हिसाब से, मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिरगंगा परिवार जो काम कर रहा है इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वगैरह कोई स्वर जन समुदाय का सबका भाग वाला इससे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिरगंगा परिवार के साथ में उसका सारथी तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
1: भरत भाई आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है, और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी आपने प्रेरित किया है, तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है और जो गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
3: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगती है तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसी भी इनमें से एक शोध बनाई। इनमें से ये पेड़ का पेड़ फर्स्ट सब्जेक्ट, अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट तो गए थे, कंपनी के हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है, आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना आएगा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आएगा पक्का।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
2: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है, तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इसको किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए। हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला तो इसमें 2-3 चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहाँ की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में 2 चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना तो वहाँ पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहाँ पे पथराड़ और डूंगराड़ है। तो पानी स्टोरेज की बात है तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूलर की बात हुई क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है, लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बचाया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए, तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, उसका साल का जो भी पीने का पानी है ना वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए, जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए, उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी तो ही हम बाहर पानी निकालने देंगे। लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज, हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं। जितने भी बोर है किसानों ने किया जो फेल हो गए हैं जिसमें पानी नहीं है वो बोर रिचार्ज करना है। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तलावड़ी बनाना है। मैं बोलता हूँ गांव के आगेवानों को, 25 इंच बारिश 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला तो वहां के गांव के आगेवानों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझाकर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चेम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआं रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गांव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जुड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है, मैं बोलता हूँ अगर पानी में कोई 1,00,000 रुपया लगाता है ना तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
2: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा, तो क्या होगा बार बार, एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है, पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ना तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है, किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ना तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी और चेक डैम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने उस गांव में खुशहाली आने देख, मैंने देखा। हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने कि हमने जोड़ा 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी, और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकटा करके वो चेकडैम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गए, तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800

0: फीट पे था वो पानी 30-40-50 फीट पे आ गया, और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा तो वो सबसे बड़ा फायदा होता।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया जल संचय के काम के लिए, कि जो जहां पर बोरवेल के मशीन ही आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना, तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं, लोगों को एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं, और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं, और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं, वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरना की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, पावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है, वहां पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से वहां काम शुरू किया, जो समझना की बात है। उस गांव में भी पानी की यही हालत थी, क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी, और वो डुंगराल प्रदेश का गांव, अगर बारिश चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासू पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। 30 साल हम गर्मी में गया था ना, तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना, तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना, तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी, तो वो यहाँ की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या के एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना, कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना, हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना, तो पानी बचाना है। वो हमने नजदीक से देखा है।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों को आप कैसे जल संचय की कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं?
2: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, हर आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े इतना कम बिगड़े, ऐसी जो समझदारी की बात है। हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते, बचाने की कोशिश करने की समझदारी सबको देते हैं।
1: हम जो सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार है, तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार, उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
2: जो से जो जल आने का मैं पहला काम करता हूँ, हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ, दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने क्या फायदा गैर फायदा होता है उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया, तो मैंने हमारी सोसाइटी जब भी बात हुई मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ, और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से आगे आगे बात काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: पोस्टबॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम चाहे रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपके जल संचय की कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
0: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए, तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं, तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे, तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का काम गवर्नमेंट में, तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की, तो हम तो लोग भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे, लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की, और मंत्रालय का काम कर रहे सीआर पाटिल साहब, सीआर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया, और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहां पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे, राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है, तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी। हमको हिम्मत मिली। हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसके काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए, ये चल रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है वो बढ़िया की है और हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है।
1: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताएं और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
0: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी। ये पानी की मूल्य है, ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है, हम देशवासी भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि सभी को साइकिल चलानी है ना तो पानी की जरूरत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के इतने आगे बढ़ गए वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए। तो पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिर गंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम मेरे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए। जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए, जब मेरे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूँ कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के CSR एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाया जाए ना तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय है ना वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं छोटा सा प्रसंग देता हूँ। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई हमारे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, अब एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला अब दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के दीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना है बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है, वहां पे गार्डन एक बनाना है, वहां की अगर स्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है। और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जल संचय में, कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआ रिचार्ज, डैम बड़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जल संचय में लगाना। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने, क्या फर्क मिलेगा। जिस गांव आपके जल संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोक भागीदारी से कर दिया होगा। और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राज्य के आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है, तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा, लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम में इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा है कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ने, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपये का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए, मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। अब विचार चला, मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सोठा गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील के एक सोठा गांव में, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुति दिया।

0: जल संचय से जन भागीदारी और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन। तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
1: कैच द रेन। बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे। लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं, वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हो या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की सफाई करना हो, हर एक छोटा कदम हमारे गिरते भूजल स्तर को वापस ऊपर उठा सकता है। तो हम सभी अपनी ओर से जल संरक्षण का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने कल मुंबई में आयोजित 86वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में 1376 छात्रों और शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की। इनमें 35 डॉक्टरेट शोधार्थी और मास्टर, बैचलर, इंटीग्रेटेड और दोहरे डिग्री कार्यक्रमों के स्नातकों को दी गई थी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर C.S. परमेश दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि थे। महाराष्ट्र में रिटायर हो चुके पुलिस डॉग्स को अब गोद लेने वाले परिवारों के पास भेजने के बजाय जीवन भर सुरक्षा बल के साथ रहने की अनुमति दी जाएगी। गृह विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद कुछ डॉग्स उन हैंडलर से अलग होने पर खाना तक नहीं खाते थे जिनके साथ उनका गहरा लगाव हो गया था। उस रिपोर्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये निर्देश दिए हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिकी अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल निर्यात रोक सकता है। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक तथा तन्वी गुंदेश, मखदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही भारतीय दल पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धाओं के शेष 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 79 किलोग्राम और 92 किलोग्राम वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: ऐसे Musically Yours पर आ गया हूँ मैं आपका हमराज। हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल, एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। मैं आपका हमराज आरजे अभिनव लेकर आया हूँ आप लोगों के पास 107.1 MHz पर, यानी कि एफ एम मुंबई पर आप लोगों के पास आपका फेवरेट शो जो कि है म्यूजिक कैफे। जी हाँ, म्यूजिक की महफिल रहेगी और आज एक फेवरेट सिंगर के साथ उनके लिए डेडिकेट हम ये शो करेंगे। पेश करता हूँ सबसे पहले ये एक सॉन्ग, आपको अंदाजा हो जाएगा।

नमस्कार दोस्तों। और आज का ये शो कुछ खास है। आज हम बात करेंगे उस आवाज़ की जिसने प्यार को भी आवाज़ दी, दोस्ती को भी, दर्द को भी और ज़िंदगी की छोटी मोटी खुशियों को भी। एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनते ही लगता है कि कोई गायक हमारे सामने बैठकर हमारी कहानी सुना रहा है। आज की पूरी महफिल डेडिकेट है कृष्ण कुमार कुन्नत को, जिन्हें दुनिया प्यार से जानती है के नाम से। के यानी कि एक ऐसी आवाज़ जिसे किसी एक दौर, किसी एक जॉनरा या किसी एक तरह के गाने में बांधना मुश्किल है। उनकी आवाज़ में खास बात थी, उसमें दिखावा नहीं था, कोई बनावटीपन नहीं था। आवाज़ जैसे सीधे दिल से निकलती थी और सीधे दिल तक पहुंचती थी। कहते हैं ना, दिल से दिल तक। तो आइए आज के म्यूज़िक कैफे में हम याद करते हैं के को, उनके गीतों को, उनकी आवाज़ को और उन यादों को जो उनके गानों के साथ हमेशा हमारे साथ रहे।

मैं हूँ आपका आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार कुन्नत। मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को आज हम भारत के सबसे यादगार प्लेबैक सिंगर्स में से एक मानते हैं, उन्होंने शुरुआत में गायक बनने का कोई सपना नहीं देखा था। वो संगीत से जुड़े जरूर थे लेकिन उनकी जर्नी सीधे फिल्म प्लेबैक सिंगिंग से शुरू नहीं हुई। उन्होंने एड्स में जिंगल्स गाए और यहीं से उनकी आवाज़ को धीरे धीरे लोगों ने पहचाना और वो पहुँचने लगी। कई बार जिंदगी में मंजिल सीधे सामने नहीं आती, छोटे छोटे रास्ते मिलते हैं और उन्हीं रास्तों से हम अपनी असली पहचान तक पहुंचते हैं। केके के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

जिंगल्स की दुनिया में उनकी अपनी आवाज़ ने जगह बनाई, उन्होंने सैकड़ों जिंगल्स पर अपनी आवाज़ दी और फिर वो वक्त आया कि अब बॉलीवुड को एक ऐसी आवाज़ मिली जो आने वाले सालों में युवाओं की आवाज़ बनने वाली थी। क्योंकि कहानी में हमें बहुत खूबसूरत बात बताती है, आपकी पहचान हमेशा आपके पहले कदम से तय नहीं होती। कभी कभी आपका असली सफ़र तब शुरू होता है जब आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितनी बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर आया साल 1999, फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम और गाना था तड़प तड़प के इस दिल से। इस गाने ने कहे कि कुछ सिर्फ एक सिंगर के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं किया बल्कि उनकी आवाज़ को लाखों दिलों में जगह दे दी। तड़प तड़प के गाना, इस गाने को सुनते हुए एक बात महसूस होती है कि दर्द सिर्फ शब्दों में नहीं है, आवाज़ के उतार चढ़ाव में भी है। क्योंकि उन्होंने दर्द को चिल्लाकर नहीं गाया, उन्होंने दर्द को महसूस करके गाया और शायद उनकी सबसे बड़ी यही ताकत थी, उनकी आवाज़ में एक कंट्रोल्ड इमोशन था। वो गाते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई कलाकार एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता था कोई इंसान सच में उस पल को जी रहा है। यही वजह थी कि उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। अब ज़रा सोचिए, अगर आपने कभी हार्टब्रेक महसूस किया है तो केके का कोई ना कोई गाना आपके साथ ज़रूर रहा होगा।

अगर आपने कभी किसी को याद किया है तो केके की आवाज़ कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंची है, और अगर आपने कभी अपने दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर जिंदगी जी है तो शायद वहां भी केके का कोई गाना बज रहा होगा। ये उनकी खासियत थी, वो सिर्फ रोमांटिक सिंगर नहीं थे, वो सिर्फ सैड सॉन्ग्स के सिंगर नहीं थे, वो सिर्फ यूथ आइकन नहीं थे, वो हर उस इमोशन के सिंगर थे जिसमें इंसान खुद को पहचान सके। मैं हूं आपका आरजे वन, आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। अब बात करते हैं उस दौर की जब केके की आवाज़ बॉलीवुड के युवा संगीत प्रेमियों के बीच यानी कि यंग ऑडियंस के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। फिल्में बदल रही थी, म्यूजिक बदल रहा था और युवाओं की चॉइस भी बदल रही थी। इस दौर में केके की आवाज़ एकदम अलग सुनाई देती थी, ना बहुत भारी, ना बहुत हल्की, ना बहुत थिएट्रिकल, बल्कि एक नेचुरल वार्म और रिलेटेबल वॉइस। ये वजह थी कि उनके गाने कॉलेज कैंपस से लेकर रेडियो स्टेशन तक हर जगह सुनाई देने लगे। और फिर आया फिल्म बचना है हंसियों का गाना खुदा जाने, जो कि मैंने आज पेश भी किया। रोमांटिक सॉन्ग नहीं था, सिर्फ एक्साइटमेंट थी, प्यार था, जर्नी थी, और सबसे बड़ी बात वो यूथफुल एनर्जी थी जिसके साथ केके की आवाज़ बहुत आसानी से जुड़ जाती है। उनकी आवाज़ बॉय नेक्स्ट डोर क्वालिटी थी, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बल्कि उनका अपना दोस्त उनके सामने बैठकर गा रहा है। और शायद इस वजह से केके इतने रिलेटेबल थे। उनकी आवाज़ में स्टार बनने की कोशिश नहीं थी, इंसान बने रहने की खूबसूरती। जिंदगी न मिली दोबारा और इसी तरह के और सारे गाने जैसे कि दिल क्यों ये मेरा और गाना इसी तरह का, तूने जो ना कहा, खासकर तूने जो ना कहा। कितनी बार ऐसा होता है हम कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, इजहार नहीं कर पाते, शिकायत नहीं कर पाते, नाराज़ होते हैं, प्यार होता है, रोकना चाहते हैं मगर रोक नहीं पाते, और फिर गाना हमारे अंदर वही बात कहता है जो हम खुद शब्दों में कह नहीं पाते। बैक टू बैक दो तीन सॉन्ग्स और पेश करूँगा आप लोगों के पास।

सीधे आगे बढ़ते हैं इस जर्नी की तरफ, और स्पेशली कुछ और गीत आप लोगों के पास लेकर आने वाला हूं मैं। बहुत सारे गीत हैं लाइनअप क्योंकि की खासियत थी उनकी वर्सेटिलिटी। वो गाते थे तो ऐसा लगता था हमारा रिश्ता सिर्फ संगीत का नहीं था, वो बहुत पर्सनल था, बहुत ज़्यादा पर्सनल। वो हमारे ब्याह पर गाते थे और हमारे इमोशंस को आवाज़ देते थे। स्कूल की यादें, कॉलेज की यादें, फ्रेंडशिप एंथम बन गया था उनका एक गाना यारों। अगर आपने यारों सुना है तो आपको पता होगा दोस्तों के गाना कितना सहज और कितना प्यारा है। तू जो मेरा प्यार के पल सच के राय दीवाना, लेकिन यारों मेरे पास है अभी और मैं ज़रूर प्ले करूँगा। पहली नौकरी की दोस्ती, हॉस्टल की रातें, कॉलेज की यादें, स्कूल की यादें, फ्रेंडशिप एंथम, पुराने दोस्त जिनसे बात कम होती है। लेकिन अभी गाना सुनाई देता है तो अचानक लगता है कि हम फिर से उसी उम्र में लौट गए हैं। कुछ गाने वक्त को रोक देते हैं और यारों उन्हीं गाने में से एक है। आज भी अगर दोस्तों का कोई पुराना ग्रुप मिल जाए तो ये गाना बज जाए तो अचानक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। किसी को कोई पुराना किस्सा याद आ जाता है और किसी को कोई दोस्त, किसी को कोई शहर और किसी को अपना पूरा बचपन। ये म्यूज़िक की ताकत है और यही केके की आवाज़ की ताकत थी। अब एक और बेहद खूबसूरत गाने की तरफ बढ़ते हैं आगे।

गाने तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आवारापन, बंजारापन, और इसके अलावा और भी, लेकिन कुछ कुछ गीत ज़रूर आप लोगों के पास लेकर आऊँगा, कुछ मेरी फेवरेट रहेंगे उसमें। आवारापन बंजारापन गाने में ट्रैवलिंग की फीलिंग थी, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में शायद घूम रहा है लेकिन अपने अंदर भी कुछ तराश रहा है। बहुत सटल डिफरेंस होता है उनके गानों में लोनलीनेस का, लेकिन होपलेसनेस नहीं होती है। तो गाने आपको इमोशन से मिलवाते हैं और आपको तोड़ते नहीं हैं, और उनके सॉन्ग्स लंबे समय तक इसलिए हमारे साथ रहते हैं। एक और गाना आया था जन्नत का, कि ज़रा सा, ये वो दौर था जब केके की आवाज़ रोमांटिक म्यूजिक की पहचान बन चुकी थी। प्यार सिंपल, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, किसी के करीब होने की इच्छा और किसी की मौजूदगी की ज़रूरत, और वही सॉफ्टनेस केके की आवाज़ को खास बनाती थी। आवाज़ में इंटेंसिटी, लेकिन वो इंटेंसिटी हमेशा कंट्रोल रहती है। वो जानते हैं कि कब आवाज़ को ऊपर ले जाना है और कब बस हल्के से गाना है। गायकी की बहुत बड़ी कला है ये। कई बार सिंगर सुर तो सही लगा देता है लेकिन इमोशन तक नहीं पहुंचता। केके के मामले में इमोशन सबसे पहले आता था, सुर उसके बाद भी याद रह जाते थे। मैं हूं आपका अर्ज और आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। केके के करियर को देखें तो उन्होंने हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में गाया, लेकिन उनकी आवाज़ हिंदी फिल्म संगीत में जिस तरह बनी वो बहुत खास थी।

ठीक है ना, अलग अलग तरह के गाने गाए हैं, रोमांटिक, सैड, रॉक, पॉप, फ्रेंडशिप, मोटिवेशनल, और लगभग हर जगह उनकी आवाज़ ने अपनी जगह पहचान बनाई। एक सिंगर की वर्सेटिलिटी ये बात से तय नहीं होती कि वो अलग अलग तरह के गाने गा सकता है, असल वर्सेटिलिटी होती है कि अलग अलग इमोशन में भी उसकी आवाज़ अपनी पहचान बनाए। केके की आवाज़ हर गाने में केके की ही रहती थी, और फिर भी गाना हर तरह से अलग महसूस होता था। ये उनकी आर्ट थी। याद करते हैं फिल्म लम्हे का वो गाना, क्या मुझे

प्यारे जो कि मैंने आज प्ले किया था, पूरा दौर याद आ जाता है। सीडीज, एफएम रेडियो, म्यूजिक चैनल्स और म्यूजिक एल्बम्स, 2000 का वो दौर, उस दौर के सॉन्ग्स हमारे पर्सनल मेमोरी से जुड़े हुए हैं। क्या क्योंकि मेमोरी उनमें सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक है। क्या मुझे प्यार है, सवाल में मासूमियत, अट्रैक्शन, और वही महसूस करता है क्या खुद पता है कि दिल में क्या चल रहा है। टेलीविजन रियलिटी शोज के जरिए अपनी पॉपुलरिटी बनाने वाले वो खुद सिंगर नहीं थे, क्योंकि कभी सेलिब्रिटी सिंगर की तरह हमारे सामने नहीं आए। धीरे धीरे आते रहे, उनका काम सामने रहा, उनकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा उनके सॉन्ग्स लोगों के बीच रहे। अगर आपका काम लोगों के दिलों में जगह बना ले तो आपका नाम खुद रोशनी में आ जाता है। अब आते हैं बेहद खास गाने पर, आंखों में तेरी, जो कि आज एक्चुअली प्ले ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो ज़रूर प्ले नहीं करूँगा। आंखों में खुद को देखना, आंखों में अपना भविष्य देखना, खूबसूरत डेफिनेशन, यही है प्यार की खूबसूरत डेफिनेशन। खुदा जाने जरा सा क्या मुझे प्यार है, आंखों में तेरी, अलविदा, सच कह रहा है दीवाना, दिल वादा, सच दे, लाइफ इन अ मेट्रो, न जाने कितने सारे सॉन्ग्स जो केके के साथ जुड़े रहे, 10 बहाने एक से बढ़कर एक जो मुझे हमेशा याद रहे। केके चले गए लेकिन उनकी आवाज़ नहीं गई, उनके गाने नहीं गए, उनकी यादें नहीं गई और शायद कभी जाएंगी भी नहीं। कुछ आवाज़ें कानों से नहीं सुनी जाती, दिल से सुनी जाती हैं। केके की आवाज़ उनमें से एक है। हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को, गायकी को, सादगी को, उन करोड़ों यादों को जिसमें उनकी आवाज़ आज भी ज़िंदा है। मैं हूँ आपका आरजा अभिनव, और केके का कोई गाना अगर आपने सुना और आपको ज़िंदगी का कोई पुराना पल याद आ गया तो समझिएगा कि म्यूज़िक ने अपना काम कर दिया। यारों की कहानी, प्यार की कहानी, जुदाई की कहानी, सफ़र की कहानी, तनाई की कहानी, ज़िंदगी की कहानी। मिलते हैं किसी और आवाज़, किसी और कहानी और किसी और याद के साथ। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, संगीत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखिए। एफएम मुंबई, दिल से दिल तक म्यूजिकली योर्स, और बैक टू बैक अब कुछ प्यारे प्यारे से गीत। सबसे पहले आपकी दुआ।

0: Rashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: इसी Musically Yours को बनाऊंगा मैं आप लोगों के साथ। अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ चुका है जो कि हिट एंड हॉट। जी हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि म्यूजिक में रहती हैं स्टोरीज, इंसिडेंट, एनेक्डोट्स और साथ साथ रहते हैं कुछ सवाल जिसके साथ मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूँ आपकी फरमाइशें। पहला सवाल ये है, क्योंकि मैं हमेशा सवालों के साथ फरमाइशें लेकर आता हूँ कि 1995 की कौन सी रोमांटिक फिल्म थी जिसमें ट्रेन कैच करने का यानी कि ट्रेन को पकड़ने का क्लाइमैक्स है, जो आज भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है और दशकों से चल रही है। इस मूवी का नाम आपको बताना है और तब तक के लिए जो कि गीत है मेरे पास, हितेन दास ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी, वो है केके की आवाज़ में सरासा।

मैंने अभी एक हालिया में सवाल पूछा था कि मतलब किस फिल्म में है ट्रेन कैच का क्लाइमैक्स, और मेरे पास काफी सारे जवाब आ चुके हैं। कम से कम 5-6 लोगों ने जरूर जवाब दिए हैं। शुभ लक्ष्मी जी, आकांक्षा, गोपाल, संजय, फिरोजी, अजय और प्रकाश शिंदे जी, इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया। जी हाँ, मूवी है DDLJ, जिसमें स्पेशली एंड का जो सीन होता है वहाँ पर काजोल भागती हैं और भाग कर ट्रेन पकड़ दी होती हैं, शाहरुख अपना हाथ फैला रहे होते हैं। इन सभी लोगों को बहुत तो बहुत थैंक यू सो मच भी कहता हूँ, और कहता हूँ कि वाह, आपने बहुत जल्दी क्रैक कर लिया। सभी के गाने की लिस्ट है मेरे पास ज़रूर, और अब मैं अमित जी के लिए गाना प्ले करता हूँ चोरी चोरी, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, और उसके बाद आप सभी लोगों के गाने हैं लाइन अप।

अगला सवाल है मेरा आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर द फर्स्ट नेम ऑफ द थ्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन थ्री इडियट, यानी थ्री इडियट में तीनों स्टूडेंट्स के नाम क्या हैं, जो तीनों स्टूडेंट्स थे जो फ्रेंड्स थे। और आप अपने जवाब ज़रूर भेजिएगा। और अब मैं अपना गीत ज़रूर लेकर आता हूँ अगला वाला, वो है मुसाफिर हूँ यारों, और फिरोशिगन प्रिया जी ने इसकी फरमाइश की थी। और उसके बाद बैक टू बैक एक और गीत लेकर आऊँगा, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिसकी फरमाइश की थी राकेश जी ने।

मेरे पास बहुत सारे जवाब आ गए हैं, जिनमें मुझे प्रणव जी ने, पंकज जी ने, दीपा जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था। और अब मैं पेश करूंगा आप लोगों के सामने एक और गीत, जिसकी फरमाइश की थी शुभ लक्ष्मी जी ने और आकांक्षा जी की, दोनों नहीं, मेरे हम सफर। और उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास छोटे से ब्रेक के बाद वापस।

0: Iran is not seeking escalation but warned that Tehran would respond if neighboring countries supported Washington's economic pressure measures. He further warned that Iran could block oil exports from the Persian Gulf and the Strait of Hormuz if regional countries joined the U.S. campaign. His remarks come after U.S. President Donald Trump announced what he described as an economic D-Day campaign against Iran, calling it the most crushing economic operation ever taken against any country, and urging U.S. allies to join Washington in isolating Tehran. At least 37 people were injured after a 5.9 magnitude earthquake struck Ibaraki Prefecture, northeast of Tokyo, earlier today. The quake also caused burst water pipes and disrupted transport services in some areas. According to the Japan Meteorological Agency, the earthquake occurred at a depth of about 70 kilometers. And in sports, in cricket, India were 168 for 2 against hosts Sri Lanka on day one of the second and final test of the series in Colombo when reports last came in. Devdutt Padikkal continued his excellent form, scoring another half a century and was unbeaten on 55, while Shubman Gill was batting on 43. Both players have stitched together an unbeaten 102-run partnership for the third wicket. Earlier, India won the toss and opted to bat. Both Indian openers were dismissed in the first session. KL Rahul scored 18 before being dismissed by Lahiru Kumara, while Yashasvi Jaiswal fell for 45 to Asitha Fernando. India have made one change to their playing 11, with seasoned Madhya Pradesh all-rounder Sairaj Jain making his test debut. Kuldeep Yadav has been ruled out due to an infection. The hosts have also been forced into changes. Dinesh Chandimal has been ruled out after suffering a concussion, while Nishan Madhushka has been dropped. Kamil Mishra is making his debut, while Pasindu Suryabandara also returns to the playing 11. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining U.S. economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बाहर लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
6: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंशधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी

0: देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: नमस्कार, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रोग्राम लव यू जिंदगी में। शाम के 5:02:50, मेरा नाम है वसीम और मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ आज ये प्रोग्राम लेकर। लव यू जिंदगी पर अंदाजे बयां, उसके बाद हम तुम, जहाँ तक हम तुम चले वहाँ तक, और 7:30 बिल्कुल आप जानते हैं कि प्रोग्राम होगा तो वो सिलसिला भी जारी रहेगा 8 बजे तक। तो उन सब के लिए आपको बने रहना है मेरे साथ। उम्मीद है कि अब तक का ये दिन, ये वीकेंड बहुत अच्छे से आप लोगों का गुजरा होगा। अब हम आ गए हैं, आप लोगों के साथ रहेंगे। आप लोग अपने मैसेजेस भेजना शुरू कर चुके हैं 8657661071 पर, और मेरे साथ बने रहिए, ये गानों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज एक ऐसा नज़रिया जो मैं आप लोगों की तरफ भेजूंगा, और आपका रवैया उस पर या उस पर नज़रिया, जो आपकी प्रतिक्रिया रहेगी वो आप मुझे मैसेज के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, ठीक है। और अब मैं शुरू करता हूँ ये प्रोग्राम लव यू ज़िंदगी। देर लगी लेकिन अब है जीना सीख लिया। कितने लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सही वक्त आएगा, सही मौका मिलेगा, तब हम जीना शुरू करेंगे। ये गाना शायद उन लोगों के लिए एक इशारा है, एक इंडिकेशन है। समझिए इसे, सुनिए, बने रहिए मेरे साथ दिल से दिल तक।

क्या सीखा। और ये भी बात ऐसी है कि मैं ऐसे यूं ना मान लूँ कि हम जी ही नहीं रहे खुलकर, ऐसा भी नहीं कि हर बार मैं वही कहूँ, लेकिन हाँ कभी कभार अगर ऐसा आपको लगे, और लव यू ज़िंदगी, ज़िंदगी से प्यार इसका मकसद ही यही है। और हर बार जब हमें मौका मिलता है, वी हैव टू हैव दैट ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड, और इसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। शिकवे शिकायतें तो चलती रहेंगी, लेकिन शो से शुक्रिया भी कर देंगे तो एक नज़रिया बदलने की देर है। प्रणव, थैंक यू सो मच। मद्रास कैफ़े के बारे में आपने इन्फो दिया, वैसे मैंने दिल तुझको दिया, ये फिल्म भी 24 साल रिलीज़ हो चुके हैं। अंकित, थैंक यू सो मच। राजेंद्र परमा, प्रणव शिंदे, विजेंद्र अकोला से, और विठल, थैंक यू सो मच। दीपा पालकर जी, आप सभी, पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी इस वक्त बने हुए हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम लव यू ज़िंदगी में। और चलिए आप लोगों को कुछ और गाने हम सुनाते हैं, और फिर वो बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, बस बने रहिए। ये रविवार की शाम, आप और हम, FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक। 5:13 मिनट और 51-52 सेकेंड हो चुके हैं। जी ले ज़रा बिल्कुल ये कहता हुआ जो गाना गुजर चुका। खैर, इस गाने से आपने

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 5:29:32 हो चुके हैं, आप लोग बने हुए हैं मेरे यानी वसीम के साथ, और उम्मीद है ये गानों का सिलसिला बहुत अच्छे से चला है। तुमने जो प्रणव जिक्र किया था वो सॉन्ग, कोई और ऑप्शन दो तो बहुत अच्छा। कभी धूप तो कभी छांव चाहती है ये जिंदगी भी न जाने क्या क्या चाहती है, बिल्कुल सही कहा। वैसे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने भारत के अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण पल दर्ज किया और हमें याद दिलाया कि जो हम जानते हैं उसे परे भी खोजने के लिए बहुत कुछ है। आइए हम बड़े सपने देखने और आगे की खोज करना जारी रखें और सितारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखें। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। स्पेस, आप सभी लोगों का हमें मैसेजेस आ रहे हैं, आप सभी लोगों के मैसेजेस हमें पहुंच रहे हैं। यस संजय दर्शन, थैंक यू सो मच, और आपने हमें जो मैसेज किया उसके लिए भी वैदेही थैंक यू सो मच फॉर दैट, अ ब्यूटिफुल पिक दैट यू हैव शेयर्ड। और विजेंद्र, आपका भी शुक्रिया, और बहुत ही प्राउड मोमेंट डेफिनेटली हम सब के लिए है, और एक विजन है और उसको करके दिखाना, और वो देश के लिए सभी पूरी दुनियावासी या दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाना देशवासी, इसको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और आप सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हमें। और ये क्या होता है ना कभी कई बार के अहेड ऑफ टाइम चलना और एक दिशा दिखाना, ये उनमें से एक मिसाल दी जा सकती है, और बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे, आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। और यस, आप सभी लोगों ने जो इन गानों का जिक्र किया, कुछ लोग तो मुझे अभी मैसेज करके बता रहे हैं कि उन्हें 7 बजे कौन सा गाना सुनना। नहीं, वो तो उसी वक्त दीजिएगा आप लोग, अभी तो नहीं, फिलहाल ये जो आप लोगों ने, चलो ठीक है, मैं ये गाने आप लोगों को सुना देता हूँ और उसके बाद लौट कर आइए। आप ये प्रोग्राम चल रहा है लव इज़ ज़िंदगी, स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

0: Nin rainbow, relax and chill.
1: 5:39 हो गए हैं और 10-11 सेकंड्स हो चुके हैं. सैयारा, क्या खूबसूरत सा ये गाना है ना. और इसके पहले भी मैंने एक गाना, यही मेरी ज़िंदगी है, जो आप लोगों को सुनाया था ना, वो गाने में भी बहुत अच्छे जो लिरिक्स उसमें थे और वर्ड्स बहुत अच्छे यूज़ किए गए थे. वैसे जी हाँ, बिल्कुल प्रणव, जीत फिल्म को भी 30 साल पूरे हो चुके हैं रिलीज़ होकर. जीत, वक्त कितनी तेज़ रफ्तार से गुजर गया. 23 अगस्त 1996 को ये रिलीज़ हुई थी. दीपा पालकर जी, शुभदा जी, और आप हैं श्रेय राउत, संजय पाटिल, अंकित, संजय दर्शन, पंकज, राजेंद्र परमार, आप सभी लोग जितने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सबका. और आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए. लव यू ज़िंदगी को हम इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और डेफिनेटली जो अचीवमेंट्स है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके सक्सेस को हम डेफिनेटली खुल कर जी रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं. आप सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं. प्रणव, बहुत अच्छी वो बात तुमने शेयर की थी, और वो कुछ इस तरह से कि कभी धूप तो कभी छाँव, ये ज़िंदगी भी न जाने क्या चाहती है. दौलत कोई तमन्ना नहीं, बस अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहती है. 1000 ख्वाहिशें दिल में जगाती है, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान. बिल्कुल, इम्तिहान देना ज़रूरी है दोस्त, और समझना मुश्किल है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा एंड फिलासफ़ी ऑफ लाइफ, लेकिन सब कुछ तो कुछ सिर्फ एक शख्स चाहती है. वाह, बहुत खूबसूरत. ज़िंदगी को बेहतर है कि इसे हंसकर गुजार लो. अगर इसे समझने गए तो वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा. सो लिव एज इट इज़ एंड द वे इट कम्स टुवर्ड्स यू. और आप लोगों को ज़िंदगी के लिए बहुत सारी बातें ये लव ज़िंदगी में मैंने की है अभी तक, और उम्मीद करता हूँ कि जो गाने भी हमने सुने हैं वो भी आप लोगों को पसंद आए हैं. वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं जो मैं शेयर करूँगा. अंदाज़े बयां में एक नज़रिया है जिसमें आप लोगों का अभी साथ में चाहूँगा, जिसमें आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. लेकिन उसके लिए करिए थोड़ा सा इंतज़ार, सुन ले रहिए ट्रैक. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अदब के साथ कह रहा हूँ. मद्रास कैफ़े का जिक्र हुआ तो मैंने ये बात कही, सुन ले रहे, स्टे ट्यून्ड.

लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स

0: सेंट्रल।
1: बिल्कुल सही। और 5:54 और 10:11 सेकंड हो चुके हैं शाम का ये वक्त। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो अब तक गुजरा है इसमें कुछ गाने और बचे हैं और वो मुकम्मल हो जाएंगे और आप लोगों को पसंद आए। ये फीडबैक आप लोगों के हमें मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। दिल का क्या करें, समीर साहब ने लिखा था इसे, जीत फिल्म जिसका जिक्र मैंने किया था, 30 साल पूरे हो गया, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ और इतना खूबसूरत नदीम श्रवण का जो म्यूज़िक था, कमाल का ये सॉन्ग। और देखिए वो फिल्म भी अपने आप में कमाल थी और आज भी जब भी देखो उसे, और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसे आप अभी देखो तो बहुत लगता है कि उस वक्त में जो बनी थी कितनी अहेड ऑफ टाइम थी ये फिल्में, और आज भी तरह तो मैं एक्चुअली एक फिल्म है मैंने प्यार किया, मैंने उसे जब देखा कुछ दिनों पहले और उसको देख कर मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनी। इसे कभी भी आप देखें, किसी भी साल किसी भी दौर में देखें, ये बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उतना वक्त आपके पास होना ज़रूरी है। फिलहाल वक्त का जिक्र मैंने किया आप लोगों से तो दो गाने और सुना देता हूँ, उसके बाद न्यूज़ अपडेट्स होंगे, फिर हम मिलेंगे आपसे 6:15 अंदाज बयां लेकर आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर, जो है म्यूजिकली आवाज़ दिल से दिल तक।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आदाब, गजल, कव्वाली, फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
2: नमस्कार आदाबर्स है, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज़ ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। प्रोग्राम अंदाज़े बयां शुरू हो चुका है और मैं हूं वसीम आप लोगों के साथ। 6:16:26 और ये सिलसिला गज़लों का, सूफी नगमों का, फिल्मी नगमों का, फिल्मी गज़लों का, कुछ शायर कुछ अशार, है ना, ये सारी बातें आप और हम, कव्वाली, सूफी नगमे, हर वो बात, ठुमरी अगर जिसका जिक्र करें तो वो भी एक ऐसे शायर, ऐसे पोएट, ऐसे लेखक, ऐसे लिरिसिस्ट, ऐसे राइटर जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा ज़रूर। एक ख्याल जो आपकी तरफ मैं भेजूँगा, मैंने जो आपसे कहा था करिए कुछ चंद गाने और जहाँ इतना इंतज़ार किया है थोड़े और सही, फिर उसके बाद वो जिक्र कर दें आप और हम इसी अंदाज में, हमें दिल से दिल तक। फिलहाल स्वानंद किरकिरे क्या कहना चाह रहे हैं इस मौला के जरिए, मौला से सुनते हैं।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अक्सर आप सुनते होंगे ना सजदा, और उसके बाद आज मैंने वो सुना ही दिया फिल्म कव्वाली आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका लुत्फ उठाया होगा। अंदाज़े बयां है 6:28:31 हो चुके हैं। ये बारिश की बूंदें जो बरसती है, ना जाने क्या कहने को आसमां से उतरती हैं, है ना। ये एक नज़रिया है, और हम लोग ये समझते हैं हमारे पास बहुत वक्त है हर चीज़ को, हर काम को करने के लिए। अक्सर ये मुमकिन है कि आपके वक्त को पता हो कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आपके पैसे को नहीं पता कि आपके पास कितना वक्त है। नकारात्मक बातें नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक रियलिटी चेक ज़रूरी है हमें। और हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल देना उसे अच्छी बात नहीं है। उस काम को कर देना, कर लेना, और फिर उससे मुतमईन हो जाना, मतलब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर फिर कोई ध्यान जाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी खूबसूरत शय है, है ना। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, तो वो एक इतनी खूबसूरत शह है कि ये सिलसिला चलता रहता है, कहीं थमता नहीं है, है ना। और बस हम गुजर रहे हैं, या कहानी में हम में कहानी, कितने खूबसूरत क्या लफ्ज़ के अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, यही खूबसूरती है। इन बातों के असर जो हम पे होते हैं ना, इन बातों का असर वो इन्हीं लफ्ज़ों की वजह से होता है कि उसको इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि बस समझ लीजिए कि उसे निचोड़ दिया जाता है और हमें पिला दिया जाता है, और हम उसे एक दवा समझ कर या दुआ समझ कर पी लेते हैं, और फिर इसके बाद उसमें ही कहीं कहते ना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सो एक बहुत ही खूबसूरत से पावर है इस वर्ड में, इस पर अगर आप गौर करें। हाँ, सिर्फ एक धोने का आवाज़।

मौसीकी सब वो चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो लिरिक्स हैं उसे अगर आप गौर करें तो बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत उसका असर हम पर होता है। वर्ड्स स्पेल याद होगा अगर आप लोगों को। फिलहाल अंदाजे बयां चल रहा है 6:30 आप और हम बने हैं कुछ खूबसूरत फिल्मी नगमों और गज़लों के बीच।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 6:42 हो गए हैं और आप मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है अंदाज़े बयां। मैं इस गाने के बारे में सोच रहा था, साथिया के बारे में, कितने सारे अल्फाज, कितने सारे लफ्ज़ वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं और एक से बढ़कर एक, हर एक अल्फाज अपने आप में कमाल थे। क्यों मैं कह रहा हूँ, वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स ऑफ कोर्स। और आकांक्षा सिन्हा नमस्कार, वैदेही थैंक यू, मीना जी नमस्कार, पंकज फिरोज सिगनपुरिया थैंक यू, दीपा जी बाबा आपको भी शुक्रिया। और चलिए मैं आपको आखिर किन के बारे में कहना चाह रहा हूँ, जो बाद में काफ़ी देर से कह रहा था। 8657661071 पर आप अपना भी जो एक नज़रिया है भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी खामोशी में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत में, कभी पुराने मौसम की याद में। ऐसे ही एक राइटर गुलजार साहब के हर एक लफ्ज़, उनके गीत हमारे दिल में उतर जाते हैं, अपने जहन में। दोस्तों, अगर आप हिंदी फिल्मों से एक बार अपने जहन में, आप सभी लोग जो सुन रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने ऐसी बस एक अहमियत समझाने के लिए कही ये बात, कि अपने जहन में हिंदी फिल्मों से एक बार, सिर्फ एक बार गुलजार हटा कर देखो, सुनो, समझो, पता चलेगा कि क्या अहमियत है गुलजार साहब की। हेमंत कुमार और गुलजार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, पंचम दा और गुलजार, सुरेश वाडकर इलैयाराजा गुलजार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार और गुलजार, विशाल भारद्वाज, एआर रहमान, क्या कहें, किसका नाम ले किसका नाम न ले, कुछ गीत जो गुलजार हुए। वैसे तो कई सारे हैं लेकिन उनमें से कुछ आप और हम सुन लेते हैं इस माध्यम से, इसके ज़रिए जो अंदाज़े बयां है, और थोड़ा सा चलते हैं उस दौर में, उस वक्त में, सुनते हैं ये खूबसूरत से नगमे, यहीं दिल से दिल तक।

बिल्कुल सही बात है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो गाने सुने आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों ने इसका लुत्फ़ उठाया। नाम गुम जाएगा एक और आपको हम ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन चूंकि अब इसके बाद ये मुकम्मल हो जाएगा अंदाज़े में यह प्रोग्राम, तो उसके बाद 7:10 पर आपसे मुलाकात होगी हम तुम प्रोग्राम में, तो वो भी 7:30 बजे तक चलेगा। फिर उसके बाद स्पॉन्सर प्रोग्राम होंगे तो उसे भी आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन चलिए, आप शेर व शायरी का जिक्र आप लोगों ने मैसेजेस में किया है तो हम कर देते हैं कि कौन ज़्यादा बेबस है, कौन ज़्यादा बेबस है, वो किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। कमाल की बात है ना दोस्तों, कमाल की बात यह है कि लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज़ ही खामोश कर देते हैं किनारा।

0: खामोश बने रहिए अंदाज़े बयां के इस खूबसूरत से नगमे के साथ। मिलूंगा आपसे इस नगमे के उस पार, न्यूज़ अपडेट, फिर उसके बाद हम तुम, दिल से दिल तक।
1: कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ इतना।

0: की सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन AIR ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। मैं हूं वसीम। 7:11 शाम का ये वक्त और 26:27 हो चुके हैं। हम तुम हमारे पास जितना वक्त है 7:30 बजे, उसके बाद प्रोग्राम होगा जो चलेगा 8 बजे तक, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। और चलिए इस प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले मैं एक पूरी पीढ़ी का जिक्र मैं कर लूँ। एक पूरी पीढ़ी के लिए सिंगर के एक एहसास है, उनके गाने एक एहसास है, उनकी आवाज़ एक एहसास है। मुझे यहाँ तक याद है कि गुलजार साहब एक स्टूडियो में बैठे थे और वहाँ पर छोड़ आए हम वो गलियाँ, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आप जाकर वो वीडियो मिले तो आप ज़रूर देखना, बहुत खूबसूरत। गुलजार साहब तारीफ़ों के पुल बांधते हुए रोके ना रुके, ऐसे इस तरह से उन्होंने गाया था के ने। अफसोस हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी 58वीं जयंती है। उनके जाने से जो खालीपन आया है वो कभी भर तो नहीं पाएगा दोस्तों, लेकिन आज उनकी विरासत का जश्न मनाने का दिन है। आइए अपनी इस जो भी जितने भी लम्हात हमें मिले हैं इस वक्त में उनकी यादों से भर लेते हैं और कुछ गाने सुन लेते हैं आप और हम उन्हें याद करते हुए। गॉन टू सून के और इन गानों के इन आवाज़ों के ज़रिए हमारे साथ आज भी मौजूद। स्टे ट्यून्ड हम तुम पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट दिल से।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और 7:24 हो गए हैं। आप सभी लोगों की जितनों की भी रिक्वेस्ट थी उसमें से एक ही रिक्वेस्ट बची। मीना जी फिर कभी आपकी रिक्वेस्ट जरूर प्ले करूंगा। फिरोज तुम्हारी जो रिक्वेस्ट थी वो मैं प्ले कर रहा हूँ। दीपा जी आपकी, प्रकाश तुम्हारी रिक्वेस्ट मैंने प्ले कर दी। अब एक और गाना, उसके बाद ये प्रोग्राम ऑफकोर्स वो प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा जो फार्म टू सिटी प्रोग्राम है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, उसे आप ज़रूर सुनेगा और वो चलेगा 8 बजे तक। तो चलिए सुनते हैं एक और गाना इससे पहले के वक्त और इजाज़त हमें न दे। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

0: चलिए अब ये प्रोग्राम हम तुम के सारे गाने यही मुकम्मल अब होगा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फार्म टू सिटी, आप उसे सुनिएगा जो चलेगा रात 8 बजे तक। अब आइए हम सुनते हैं प्रोग्राम फार्म टू सिटी आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर।
1: श्रोते हो, सादर करत आहोत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।

नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फार्म टू सिटी आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। मेरे यहाँ से जाने का वक्त हुआ है और वहीं हम तो प्रोग्राम भी मुकम्मल हो गया था। अब एंजेला आ चुकी है स्टूडियो में और वो रहने वाली हैं रात 8 बजे से आप लोगों के साथ अपनी चॉइस ऑफ सॉन्ग्स लेकर। तो बने रहिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो के साथ, कहीं भी जाएँ सुनते रहें। मिलूंगा अगले प्रोग्राम में, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, कौन है इसमें। तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए।

0: इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाद

0: मतदाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, एआई, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एम

0: जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पॉडकास्ट।
3: बल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। द आकाशवाणी पॉडकास्ट लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं और आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम तो आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो जैसे ही आया ना स्टूडियो में, तो इनके बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, पूरी ऑडियंस में भी उत्साह है। एंड इंडियन आइडल सीजन 16 के सेकंड रनर अप मनराज वीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं पाजी आप?
4: आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो?
3: बहुत बढ़िया, चंगा एकदम। आप आ गए ना, मतलब बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है, और बातचीत करने के लिए जब आप आ गए हो। कहते हैं कि सपना एक देखो ना, मुश्किलें 1000 आती है, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है,
4: बिल्कुल,
3: लेकिन वो बचपन के सपने जब आप साकार करने के लिए निकलते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? शुरुआत दिल्ली से हुई, लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद म्यूजिक कैसे आया लाइफ में?
4: शुरुआत मेरी एक्चुअली मेरी फैमिली में म्यूजिक वाला कोई नहीं था स्टार्टिंग में, सिवाय मेरे चाचा के। तो जैसे कि मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि मेरे चाचा की वजह से मैं म्यूजिक लाइन में आया हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो लाइक वो भी जागरण होते हैं, माता की चौकी, इन सब में ना पहले ढोलक बजाते थे वो।
3: अच्छा।
4: और तो वो ढोलक घर में पड़ी रहती थी, ठीक है, ढोलक, तबला, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी घर में होते थे, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको देख के ये थोड़ी सी अंदर रहता था कि यार ये क्या चीज़ है, कैसे बजाते हैं, कैसे बजता है। और जागरण में

0: ज्यादातर तो बहुत सारे सिंगर्स आके गाते हैं।
1: किस एज की बात कर रहे हैं आप? वैसे तो अभी भी बहुत यंग है आप।
0: दिस इज ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सात आठ साल के आसपास की बात है।
1: क्या बात है,
0: मतलब उस टाइम पे ये था कि देखना सिंगर्स को गाते हुए, देखना माइक पकड़ के गा रहे हैं, कैसा माता की बेटे गा रहे हैं और भी मतलब इतना सुरीला गा रहे हैं, मगर ये कैसे कर रहे हैं, अच्छा और इतना अच्छा कैसे लग रहा है सुनने में, इतने सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजा रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो वहीं से थोड़ा सा बस ये कीड़ा म्यूजिक का धीरे धीरे जागा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते गए, जैसे स्कूल में हाउसेज होते हैं ना, जैसे सैटरडे संडे को हाउसेज
1: एक्टिविटी होती है, एक्टिविटीज होती है,
0: हाँ, किसी का रेड हाउस होता है, किसी का येलो ग्रीन, तो ऐसे हाउसेज में कॉम्पिटिशन होते थे, तो वहीं पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, मतलब स्कूल में होती है बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे अगर मैं प्राइजेस जीत रहा हूँ तो मतलब कुछ तो अच्छा है आवाज़ में, तो वहीं से बस थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया और म्यूजिक सीखता गया और अच्छे अच्छे गाने गाता गया। तो धीरे धीरे घर में भी पता लगा कि यार ये तो गाता है, इसकी तो आवाज़ में कुछ तो है। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो बेसिक होते हैं, जो लाइसेंस होते हैं ना सिंगिंग के, वो देना उन्होंने मुझे स्टार्ट किया वहाँ से। तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट आता गया। फिर वहाँ से कॉलेज, मतलब जब मैंने ट्वेल्थ पास आउट की, उसके बाद मैं गया DU में, शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मतलब उससे पहले मेरे पास दो तीन ऑप्शन और थे, जैसे NDA के एग्ज़ाम दिए मैंने, एनडी मतलब बहुत सारे, मतलब कि कभी मैं ऑफिसर बन जाऊं, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊं, कभी मेरा एडमिशन हो रहा था वहाँ पे चंडीगढ़ एस्ट्रोनॉटिकल्स कॉलेज में, बीच में सोच लिया मैं पायलट बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या सोचा। फिर उसके बाद बेसिकली अंदर से समझ में आया कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक ही पसंद है और अगर मुझे कुछ करना है तो म्यूज़िक में ही करना है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं यार पापा, मैं जा रहा हूँ DU में। तो DU में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत होती है, आपको पता ही है, मतलब काफ़ी सारे, मतलब एक्टिंग सोसाइटी होती है, म्यूजिक सोसाइटी होती है। तो एडमिशन लेते के नेक्स्ट, मतलब एडमिशन आज फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन लिया, कल ही मुझे पता लगा कल ऑडिशन चल रहे हैं रिवर्ब सोसाइटी के, जो हमारी म्यूजिक सोसाइटी है कॉलेज में। तो मैं खुश, मैं कहा यार ये तो बेस्ट हो गया, वहाँ जाके ऑडिशन दिया, मतलब उन सब के अंदर के ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया और मैं खुश, मैं कहा मेरा तो एडमिशन आज हो गया, मैं म्यूजिक सोसाइटी में आ गया, मेरा एडमिशन हो गया। तो वहीं से फिर कॉलेज कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुए। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको भी बहुत नॉलेज होती है म्यूजिक की, तो फिर वहाँ से उनसे भी सीखना मैंने चालू कर दिया। तो मतलब ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जिससे मैंने कभी सीखा लाइफ में, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मेरे चाचा हो गए या जितने भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हो गए, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो गुरु, मतलब मैं जिनसे भी आज तक मतलब मैं मिला हूँ म्यूजिकली, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मतलब उनको पता भी नहीं हो, मतलब उनको आइडिया भी नहीं होगा कि मैंने उनसे सीख लिया, बट मुझे पता है। फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ
1: जी,
0: कुछ चीज़ें मुझे अगर आपकी अच्छी लगेंगी तो मैं आपसे ग्रैब कर लूँगा, आपको पता भी नहीं लगेगा।
1: नहीं देखो, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आज थोड़ा सच धज के आऊं, लेकिन स्टाइलिस्ट जो है अगर बात करें या फिर स्टाइलिश किंग की बात करें तो आपको ज्यादा टाइटल सूट करता है, इंडियन आइडल में मिला है आपको ये खिताब, है ना, रोमांटिक किंग भी कहा जाता है। एंड हम प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, हम कंपोजिशन की भी बात करते हैं, हम सिंगिंग की भी बात करते हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे लेकर आते हैं आप? और ये टर्न जो था ये आई थिंक ये कोविड के टाइम में आया था
0: ये? नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, मतलब हाँ होता है, क्योंकि देखो अंदर एक स्टार्टिंग से कीड़ा रहा है अंदर कि मुझे अपना म्यूजिक बनाना है, मेरे को इंडिपेंडेंटली म्यूजिक बनाना है, अपने गाने बनाने हैं, लाइक अपनी जो क्रिएशन है वो लोगों को सुनानी है। अब जो गाने ऑलरेडी जिन्होंने बनाए हैं वो तो बने ही हैं, वो तो हम गाते ही हैं, लोगों को मतलब ऑलरेडी पसंद है, बट जो एज ए म्यूजिक कंपोजर एक ना विजन होती है कि मैं चाहता हूँ कि यार इस टॉपिक पे ये गाना बनाऊँ क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है, अभी मेरा मन कर रहा है तो मैं लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने गाने के फॉर्म में, ये मोटिवेट करना है, या मुझे इस तरीके का प्यार फील हो रहा है, क्या यही लोगों को होता है, चलो यार इसके ऊपर भी गाना बना के देखते हैं। मतलब ये कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी है क्रिएशन है, वो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो मतलब म्यूज़िक मेरे लिए खाली गाना ही नहीं है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोग फील करते हैं, लाइक म्यूज़िक में हर इमोशन होता है, सैड होता है, रोमांटिक होता है, एनर्जी हो गई, डांस हो गया, एवरीथिंग, तो हर चीज़ फील होनी लोगों को ज़रूरी है। म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग, मतलब कहते हैं ना कि म्यूज़िक हील करता है, तो वो हील तभी करेगा जब वो आपके फील पकड़ेगा अंदर की, है ना। तो मेरा बस यही रहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे अच्छे अच्छे और उनकी जो लाइफ में हुआ है वो सारे सिनेरियोज देख के मुझे डांस पे भी गाने बनाने हैं, मुझे सैड भी बनाने हैं, मतलब लोग फील कर पाएँ।

0: चलिए, आपने हीलिंग की बात कही है, एक बात कही जाती है कि मुश्किल रास्तों पर भी आसान ये सफर लगता है, माँ की दुआओं का असर लगता है। माता जी की तबीयत अब कैसी है और उनका योगदान कितना रहा है? जब भी आपके लाइव शो में आती थी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी।
1: मॉम का मेरा थोड़ा ऐसा ही है, वो बहुत इमोशनल है, उनको बहुत दिक्कत भी है, जैसे उनको सांस की दिक्कत है, उनके लंग की जो लंग्स एक होता है ना, मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की लंग कैपेसिटी होती है वो अगर 100% है तो उनकी वो 35-40% है। तो और ऊपर से पॉल्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें, और कुछ भी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूल जाती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में उनके माइंड में ना बहुत कुछ चलता है। अब मतलब बिफोर आइडल उनके माइंड में ये चलता रहता था कि यार ये क्या सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि मेरी फैमिली में से मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है कि लोग थोड़े थोड़े मतलब स्टेप बैक करते हैं कि नहीं यार तू ये काम मत कर, नहीं तू ऐसा ही कर, नहीं होगा इसमें कुछ तेरा। तो मतलब मुझे ऐसा कभी रिस्पॉन्स मिला नहीं मेरी फैमिली से कि यार बोले कि नहीं यार तू, मतलब सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और सबसे बड़ा सपोर्टिव इंसान मेरी लाइफ में रहा है वो है मेरी माँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक ना बैक एंड पे चीज़ चल रही होती है ना मेरे, जो मेरी बैक के पीछे जो मुझे सपोर्ट हर टाइम जो मुझे दे रहा होता है वो मेरी मम्मी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ मेरे पापा को डाउट है तो मेरे वो मेरे से पूछेंगे नहीं, वो पहले डाउट उनका मम्मी ने क्लियर कर दिया कि नहीं ये करेगा उसमें ऐसे ऐसे करना, हो गया खत्म।
0: मतलब साथ है हमेशा,
1: मतलब मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी। अगर मेरे दादा ने कुछ पूछा है कि यार मनराज के साथ ये, तो मेरे से पहले मम्मी आके बोल देंगी लो ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे कर ले खत्म।
0: वैसे तो माँ और फैमिली का जब जिक्र आता है तो हर कोई जो है काफी इमोशनल हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब माँ का जिक्र आए या माँ की तस्वीर सामने आए तो कोई गाना आपके जहन में आता है यार माँ को लेकर जो डेडिकेट करना चाहे? आई एम श्योर के स्टूडियो में जितने लोग हैं या शो भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुनना चाहेंगे, कोई भी एक भाव।
1: ओके, आते तो वैसे बहुत सारे हैं बट अभी कौन सा भाव सुना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
0: जो भी मतलब प्यार से रोमांटिक किंग तो आपको कहा ही जाता है, लेकिन हाँ मतलब जो आपके बहुत करीब है।
1: अगर ऐसा अगर कुछ वो करना है, रिलेट करना है, तो एक गाना है मेरे पास, मेरा फेवरेट भी है
0: जी।
1: तो वैसे तो वो गाना मतलब अपने लवर के लिए गाते हैं, बट उस गाने का मीनिंग मेरे लिए आप ये कह सकते हो कि मेरी माँ है, तो मैं वो मैं सुनाता हूँ।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, क्या कमाल की आवाज है आपकी. एंड कमाल तो आप करके भी आए इंडियन आइडल में, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज क्या क्या होता है, क्या मस्ती होती है, क्या मजाक होते हैं, एंड प्रेशर होता है?
1: बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. वो टीवी पे देखने में लगता नहीं, मतलब लगता नहीं है लोगों को, बट बैक स्टेज की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो बहुत प्रेशर होता है भाई. देखो मतलब मुझे पता लगा है कि अभी एक घंटे बाद मेरी परफॉर्मेंस है, तो वो एंग्जाइटी और वो जो नर्वसनेस ना, वो एक घंटे पहले आनी स्टार्ट हो जाती है. उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ क्यों. क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस टाइमिंग होती है 4 से 5 मिनट, हमें 5 मिनट में अपना बेस्ट देना है वहाँ पे स्टेज पे. अब आपके पीछे इतने सारे लाइट्स वाले सब कुछ सेटअप हो रहा है, एक घंटे तक साउंड चेक चल रहा है. अब साउंड चेक होने के बाद आपके पास 5 मिनट है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा. ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि अच्छा ही हो, बुरा हो गया तो फिर जजेस के स्कोर नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो यही रहता था कि यार गलती ना हो जाए, यार मैं क्या मुझे लिरिक्स याद हैं, मैं मतलब रट के देखना. कभी कभार तो हाथ पे लिख लेते थे, कुछ एक आधा वर्ड होता था ना जो हमेशा अटकता था.
0: आजकल वो कैमरे में पता लग जाता, पर
1: नहीं पता लगता. मतलब ये, मतलब ये ना सिंगर ही समझ सकता है. जैसे गानों में 4-4 अंतरे हम गा रहे हैं. अब मैं यहाँ पे अगर कोई यहाँ बैठ के कोई गाना गा रहा हूँ, कुछ एक आधा वर्ड ऊपर नीचे भी होता है तो चलता है, अभी कोई जज नहीं कर रहा है बैठ के. लेकिन अभी

0: क्या बात है, तो उनको दिखाया माता जी का क्या कहना था?
1: देखो पहले तो उनको टैटू से बहुत प्रॉब्लम थी,
0: हर पेरेंट्स को होती है कहीं ना कहीं,
1: होती है। तो जब उन्हें पता लगा अच्छा मेरी सन ऑफ बर्थ लिखवाई है, फिर ठीक है बढ़िया है। तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र है।
0: क्या बात टैटू है। कहते ना इशक होता है हीरे आधे वरदा, रब तो छुपाई दावे साजना। द ग्रेट लेजेंड सतेंद्र सरताज
1: जी,
0: उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला है आपको
1: जी,
0: कैसी फीलिंग थी? आपने कैसे मतलब क्या भाव थे, नर्वसनेस उस दौरान थी एक लेजेंड के साथ परफॉर्म करना?
1: नर्वसनेस तो नहीं बोलूंगा मैं, बट उस टाइम मैं बहुत ब्लेस्ड था। एक्चुअली एक हमारा एपिसोड था रीयूनियन, जिसकी आप बात कर रहे हो
0: जी,
1: रीयूनियन एपिसोड था, उसमें आए थे वो। और क्या होता ना कि जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सिख कम्युनिटी, एंड मतलब पंजाबियों के लिए, नॉट ओनली सिख, पूरे पंजाब के लिए, मतलब देश भर में और जितने मतलब पूरी दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं सबके लिए सतेंद्र सरताज बहुत बड़ा नाम है ना, क्योंकि उनकी जो गायकी है वो खाली गायकी नहीं है, उनके गायकी में भी लेसन्स हैं। वो जो लिखते हैं, वो जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी गायकी में लेसन्स हैं। तो बहुत पहले से, लाइक जब मैं कॉलेज में था, आई थिंक 17-18 साल का था, तब से उनका जो मतलब गाने, उडारियाँ हो गया, सज्जन राधे जिसके आप बापी, जो अभी आप गाना गा रहे थे, तो सबके गाने के लिरिक्स आप देखोगे ना, अगर आप सोचने समझने जाओगे कि इन्होंने बोला क्या है, मतलब गाने से ज़्यादा लिरिक्स आपके दिल में बैठ जाएंगे, फिर आप और प्यार करोगे उनसे। तो वही ब्लेसिंग थी, वही एक ऐसा बोल सकते हो कि हाथ था सर पे ऊपर वाले का, कि उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। और बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: बैक ऑफ द स्टेज भी काफी बातें हुई होगी उनसे?
1: बैक ऑफ द स्टेज यही बातें होती हैं कि मतलब बैक ऑफ द स्टेज मोस्टली क्या होता है कि टीवी पे नहीं दिखाते कि जजेस हमें आके बता रहे हैं या आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो बैक स्टेज में यही होता है कि मेरी परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल खत्म हुई, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं जा सकता हूँ जजेस के पास भी, यार मैंने ये चीज़ ऐसे करी,
0: फीडबैक के लिए।
1: जैसे गाने के बीच में कोई भी जैसे इम्प्रॉम्प्टो पार्ट डाला, जैसे वो भी कह रहे थे कि तबले का आप डालते हो बीच में, अच्छा लगता है ये सब,
0: तो फ्यूजन और वेरिएशन,
1: तो मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब वो डर रहता था। मतलब जो हमारे मेंटर हैं आनंद सर, जो इंडियन आइडल जो सबकी तैयारी करवाते हैं बैक स्टेज, तो मतलब उनसे सबसे पहले तो उनसे पूछना कि सर इसमें कुछ ऐसा करते हैं, तो वो भी आइडियाज लगा के हम कुछ आपस में वो उसको बनाते थे। तो मेरी फिर ये सब करने के बाद टेंशन ये कि क्या ये जजेस को पसंद आएगा। देखो ऑडियंस का तो बाद में है, लेकिन पहले जो बैठे हैं उनको पसंद आना चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस एक दो बार खत्म होने के बाद में जाता था कि मैं सर ये पार्ट कैसा लगा, सर ये मैम ये मतलब श्रेया मैम, विशाल सर, बादशाह बाजी, तो उनसे पूछते थे कि ये आपको पार्ट कैसा लगा, कि हाँ यार मज़ा आ गया। कभी कभार तो परफॉर्मेंस के दौरान ही खड़े होते कि यार क्या कर दिया, मज़ा आ गया। बैक स्टेज यही सारी चीज़ें चलती है, और सतेंद्र पाजी के साथ भी सेम यही चीज़। उन्होंने मुझे उस एपिसोड में ब्रॉच, जो पगड़ी ब्रॉच वो डालते हैं
0: जी,
1: वो भी उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे,
0: वो हर परफॉर्मेंस में लेके आते हैं।
1: हाँ, वो डालते ही हैं, उनका जो भी गेटअप रहता है शोज का वो डालते हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें सिखाई इंडस्ट्री के बारे में। एक तो उनके बोलने का तरीका, उनका लहजा ऐसा है कि हर कोई पिघल जाएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई। तो उनसे ये भी बहुत सीखने को मिला कि सबके साथ नरमी से पेश आओ,
0: डाउन टू अर्थ।
1: यस, तो ये सब चीज बैक स्टेज ये सब चलता है।
0: क्या बात है, कोई ऐसे लम्हे, कोई फनी किस्सा जो मतलब किसी के साथ आपने शेयर ना किया हो, यहाँ पर करना चाहे, चलते लाइव शो में हुआ हो या फिर जजेस के साथ?
1: फनी किस्सा ये है कि एक मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान के का, आई थिंक वो एलिमिनेशन एपिसोड था, टॉप 10 का एलिमिनेशन एपिसोड था वो, उसमें मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान। तो क्या हुआ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया स्टेज पे, और वो ना स्टेज पे पीछे से जो आइस होती है ना, ड्राई आइस जो आप देखते हो कि धुआं धुआं आता है, वो होती है ड्राई आइस, तो वो आ रही थी स्टेज पे पीछे से। तो मैं फुल मैं वहाँ पे कूद कूद के गाना गा रहा हूँ मस्त, बिल्कुल रॉकस्टार बन के, साथ में गिटार पे शांतनु भाई खड़े हैं, वो अपना गिटार बजा रहे हैं। तो क्या हो गया, अंतरा खत्म हुआ, अंतरे के बाद ना एक पोर्शन आता है जहाँ पे बहुत हाई कुछ गाना होता है, तो उसको गाने के लिए मैं एकदम ऐसे पीछे हुआ तो स्टेज पे गिर गया। वो तो वो बड़ा फनी था, फटाफट गिर के मैं उठ के दोबारा गाने लग गया, नाता समझे ना ये दिल मेरा, तो फिर सब देख रहे हैं कि हाँ यार। तो मतलब ये सब चीजें फनी होती रहती है बीच बीच, ये टीवी पे आया नहीं।
0: वेल, उतार चढ़ाव तो लाइफ में होते हैं, लेकिन मौसम कितना मतलब मिजाज चेंज करता है। दिल्ली की बात कर लो आप, दिल्ली से शुरुआत आपकी हुई है, एंड शुरुआती दौर में आप यूट्यूबर भी रहे हैं, आई गेस यूट्यूब से आपने शुरुआत की थी।
1: यूट्यूब नहीं, मैं मतलब वैसे यूट्यूबर नहीं हूँ, बट हमारा हम जैसे मार्विक बैठा, देखो आप मतलब हम दोनों सेम ही क्लास में थे, और लोगों को पता है अभी, फॉर एग्जांपल आइडल में भी

0: एक गाना कहता बरसात,
1: ओके
0: बरसात गाना आपने देखा होगा, जिस मतलब
1: जी
0: आइडल
1: सर,
0: में पहली बार हुआ था कि किसने अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
1: ऐसा बहुत कम होता है,
0: ऐसा ऐसा बहुत कम है, ऐसा होता ही नहीं है कि आइडल में कोई भी कंटेस्टेंट अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म कर रहा है। तो वो मौका मुझे मिला, मैं बहुत ग्रेटफुल था उस टाइम पे। और तो फिर वो गाना मारविक ने ही लिखा था, मैंने गाया, तो हम दोनों स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं साथ में। और तो गाने बनाते हैं हम, गाने बना के सेल करते हैं। हमें ऑलरेडी, हम कॉलेज में मिले थे तो कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था हमने, तो वहीं से फिर हमने सोचा कि अपने गाने बना के यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो हमारा चैनल भी है द ट्विस्टी ट्यून्स नाम से, तो वहीं पर हमारे गाने भी आते हैं। तो हम मतलब शुरुआत सब मतलब हर किसी म्यूजिशियन की शुरुआत ऐसे ही होती है, कहीं तो इंस्टा पे डालेगा, साउंड क्लाउड पे या यूट्यूब पे। तो कुछ हमने भी ऐसी करी शुरुआत अपनी।
1: कॉमेडी किंग भी आपसे मिले थे, द कपिल शर्मा।
0: हाँ,
1: एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आपको
0: बहुत ही अच्छा एपिसोड था वो।
1: हाँ कि पाजी, इतनी सारी चीजें आप कैसे करते हो, कंपोजिशन भी खुद कर लेते हो, गायकी तो कर ही रहे हो एंड प्रोडक्शन में भी हो, ये मल्टीटास्किंग कैसे हो पाती है?
0: मल्टीटास्किंग ऐसे हो पाती है क्योंकि दिल बोलता है करने को। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि कोई चार्ट मुझे फॉलो करना है, करना है, बस वो दिल से आता है। मतलब मेरे अंदर एक ये है, मतलब जो एक आग रहती है ना अंदर की, मुझे ये काम करना है तो करना है। अब मैंने सोचा है कि अगर मुझे म्यूजिक बनाना है तो वो मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा। अगर मैं उस चीज़ में नहीं हाथ बढ़ाऊँगा तो फिर मतलब उसका फ़ायदा ही नहीं है। वो मैं उस चीज़ को कैसे पूरा करूँगा, कैसे गाने बनाऊँगा? तो गाने बनाना है, म्यूज़िक प्रोडक्शन करना। अब गाने बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होता है, म्यूज़िक कंपोजिशन क्या होती है, म्यूज़िक अरेंजमेंट्स क्या होती है, गाने को किस तरीके से गाना है, कितने स्टाइल में गाना है। तो जब मुझे ये पता है कि गाना बनाना है तो फिर मेरे अंदर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई कि गाने को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करनी है। और अगर मुझे कोई चीज उनमें से नहीं आती तो वो मुझे सीखना है,
1: क्या
0: तो फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाता अंदर से।
1: हाँ, कपिल शर्मा एपिसोड के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे।
0: हाँ, वो मैं एपिसोड की बात कर रहा था। एपिसोड बहुत अच्छा था, वो बहुत ही एनर्जेटिक एपिसोड था। उनकी तो एनर्जी ऑलरेडी आप सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है उनकी एनर्जी कैसी है। तो जब मतलब उससे जब वो आए, उससे हाफ डे शूटिंग का काफी शांत, मैं बोलूँ तो बोरिंग चल रहा था, और जैसे ही वो आए, जो हाफ एपिसोड में वो आए, तो मतलब एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया। फिर हमारा गाने का एनर्जी लेवल भी चेंज हो गया। फिर अपने आप को प्रेजेंट करने का, एक होता है ना पंजाबी जब आ जाता है तो फिर सबको पता ही एनर्जी का क्या होता है।
1: लाइव में तो उन्होंने जो कहा वो सबने सुना, लेकिन लाइव के बगैर अगर हम बात करें तो उनसे बात हुई
0: नहीं, उनसे मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, मतलब ऑन स्टेज ही बात होती। जैसे उनके साथ मैंने छल्ला गाना गाया था, तो जब साउंड चेक हो रहा होता है तो हमारे पास आधा पौना घंटा होता है साउंड चेक करने के लिए। तो वही दोनों खड़े हुए थे स्टेज पे, हम लोग बात कर रहे थे, बस उतना।
1: बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे फेवरेट मेरा पता है कौन सा था, जब आप गा रहे थे, आपने सिंगिंग शुरू की थी, हेमा मालिनी एकदम खड़ी हो गई थी। वो एकदम उनके लिए शॉकिंग था, और मतलब एक अलग ही गूज़बम्प ऑडियंस को भी आ गए थे। वो क्या था, वो शेयर करना चाहेंगे, वो कैसी फीलिंग थी?
0: बहुत नहीं, एक्चुअली क्या होता है कभी कभार, तो मैं अपनी परफॉर्मेंसेस, मैं जब भी गा रहा होता हूँ ना, आप मेरी मोस्टली वीडियोस देखोगे, मेरी आंख बंद रहती है, मेरा ध्यान सिर्फ गायकी पे होता है कि मेरा सुर ठीक लग जाए, मैं लिरिक सही गा दूँ, मेरा ध्यान ऐसे ही होता है। तो बाद में लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो ना, ऐसे ही वो यार मैम तो खड़े हो गए थे, या मैम बीच में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, श्रेय मैम खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं आधे गाने में, का अच्छा, क्योंकि मेरी तो आंख बंद रहती है, मैं गाने पर ध्यान रहता है मेरा, बस बाद में फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया था, तो मतलब अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अच्छे से गाऊं, और वो तो बाद में टेलीकास्ट में देखता हूँ, अच्छा ये रिएक्शन था क्या, ओ नाइस, मुझे पता होता तो मैं स्टेज पे थोड़ा ओवर रिएक्ट करता।
1: ये तो होता है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसने लाइफ एकदम बदल दी हो, जजेस ने आप पर्सनली आके आपसे बात की हो और आपको लगा ये वाली जो राय है ना ये मेरे साथ रहेगी हमेशा?
0: तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जजेस स्पेशली जब खड़े होते हैं तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। आई थिंक मतलब श्रेया मैम से, विशाल डडलानी सर से, बादशाह बाजी, ये तीनों खड़े हो गए, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपके म्यूज़िक को जब कोई पहचान लेता है, तो लास्ट फिनाले एपिसोड में बादशाह बाजी ने बोला कि यार ये बंदा, जैसे हम लोग मतलब वो अपने आप को भी और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, करण औजला, दिलजीत दोसांझ, इन सबको पॉइंट आउट मतलब बोल रहे थे कि जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े अरेनाज फिल करे हैं, शोज होते हैं हमारे सोल्ड आउट, तो तुम भी करोगे, उन्होंने मुझे बोला। तो क्या होता है जब इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको ये चीज़ बोल देता है ना, तो आपका भी कॉन्फिडेंस मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार शायद, मतलब जैसे इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों ने अपना लिया ना, तो इसका मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि यार आज दिलजीत दोसांझ पाजी ने या करण औजला पाजी ने ये सब फिल किया है ना, तो तुम भी कर सकते हो, मतलब आज से 2-3 साल पहले क्या

0: होता था कि वैलिडेशन चाहिए होती थी कि यार कोई भी हमें देखे, कोई बड़ा जो स्टार है उस मतलब उसकी नज़रों में आ जाए, है ना। मतलब यही सपना रहता था कि यार क्या इन्हें पता भी है हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, क्या बादशाह बाजी को पता होगा, क्या दिलजीत को पता है कि भाई मैं मतलब मनराज कौन है। हमें तो पता है दिलजीत दोसांझ कौन है, ठीक है,
1: बिल्कुल
0: पर क्या उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। अब जब ऐसा फील होता है ना कि नहीं पूरी इंडस्ट्री को पता है कि मनराज वीर कौन है, तो
1: राइट।
0: एक वो सेटिस्फेक्शन और एक वो कॉन्फिडेंस ना वो अंदर आ जाता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली हैं मुझे, विशाल सर ने भी बोला कि यार यू आर अ रॉक स्टार, ठीक है, आपकी बहुत यूनिक आवाज़ है, ठीक है। श्रेया मैम ने बोला कि यार इंडियन आइडल में कि आप इस सीज़न के इंडियन आइडल की खोज हो। तो इतनी इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं ना, तो बस एक ये है कि अंदर और काम करने की इच्छा आ जाती है।
1: वो जब
0: वो कभी
1: कॉम्प्लीमेंट मिला
0: मरने
1: आपको बादशाह पाजी से, वो वाला गाना एक बार हो जाए, कम ऑन, हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए, लिसनर्स के लिए हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो गाने से पहले मिला था, बट मैं गाना गा देता हूँ। एक्चुअली वो वही गाना था जो मैंने ऑडिशन में गाया फिर तारा हूँ दर बदर। तो क्या था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था इंडियन आइडल पे। लास्ट में क्या होता है कि जो टॉप थ्री थे हम सबको अपने अपने जर्नी के पहले पहले सॉन्ग परफॉर्म करने थे, तो मैंने भी ये परफॉर्म किया था, तो उन्होंने इससे पहले ये बात बोली थी, और तो मैं ये गाना गाता हूँ अभी।

0: क्या बात है निशान, तो आप छोड़ ही रहे हैं हर किसी के दिल में. वेल, आप तो सबके फेवरेट हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है? आपका फेवरेट सिंगर कौन है? क्या कोई इंटरनेशनल सिंगर जिसने बहुत यू नो इंस्पायर किया हो आपको लाइफ में?
1: इंटरनेशनल, पहले तो मैं इंडियन इंडियन की बात करता हूँ
0: जी.
1: इंडियन में जो सबसे पहली मेरी जो इंस्पिरेशन है वो तो वही है, दिलजीत दोसांझ. सबसे पहली इंस्पिरेशन कि मतलब एक होता है ना कि देखो मैं भी सीखूं, मतलब सीख छोड़ो मैं भी पंजाबी हूँ, वो भी पंजाबी हैं और पूरे पंजाब को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं. ठीक है, सर पे पगड़ी है, मेरी भी सर पे पगड़ी है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ कि यार और जो वो भी जिस टाइप का म्यूज़िक कर रहे हैं सेम टाइप का म्यूज़िक मैं ही कर रहा हूँ. तो मतलब एक होता है कि यार हाँ, अगर ये इंसान यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है तो सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं. तो मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए अभी तक वही है. और अगर आप इंटरनेशनली बात करो तो दो वेस्टर्न आर्टिस्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो ब्रूनो मार्स और एक है वीकेंड. इन दोनों का म्यूजिक
0: एकदम बहुत ही वाइब अलग होगी ना.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मतलब फ्यूजन और पार्टीज वाली वाइब आपको ज्यादा पसंद है.
1: यस,
0: दिलजीत पाजी की आपने बात की है, गबरू तो वैरे ने भी मिठा बोल दा, नहीं तू तो फिर जट दा प्यार वाली एक गाना एक
1: क्या
0: कुछ हो जाए उनके लिए भी कुछ हो जाए
1: उनके लिए. डायमंडा दा नाल तोड़दा जिन्ना तेरा पार गोरिये, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिये. गल विच पाया 40 लाख बोलदा, डालर च 80,000 गोरिये, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिये.
0: क्या बात है, क्या बात है, एकदम पार्टी वाली वाइब जो है बन गई है स्टूडियो में भी, बहुत ही कमाल. वैसे कहते हैं कि मतलब अगर आप पंजाबियों से बात कर रहे हैं ना खासकर, तो फिर खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदे किसे दा दुखायो.
1: सही बात है.
0: exactly. तो खाने पीने के शौकीन है, मतलब आपको दिल्ली का फूड पसंद है?
1: दिल्ली का बहुत ज्यादा पसंद है. मैं
0: परहेज नहीं करते हम लोग,
1: नहीं
0: गले के लिए
1: मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता. हालांकि बोलते हैं लोग परहेज करो, बट मैं बिल्कुल नहीं करता. उसका रीजन ये है कि यार एक बहुत अच्छी फिलोसफी है, अच्छा खाओगे तो अच्छा गाओगे. बस. और ये फिलोसफी मैंने सीखी है मेरे मेंटर, इंडियन आइडल के जो मेंटर है आनंद सर, उनसे.
0: वैसे कहते हैं ना आवाज अच्छा की दुनिया में अगर आप हैं तो उतना चाहिए.
1: हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जो चीज अच्छी लग रही है. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम भी नहीं खाते, कुछ सिंगर से बोलते हैं आइसक्रीम नहीं खाएंगे, मैं खा लेता हूँ.
0: अच्छा.
1: हाँ, मुझे कुछ इतना
0: परफॉर्मेंस से पहले या एक रात पहले?
1: नहीं नहीं, परफॉर्मेंस से पहले तो ऑब्वियसली नहीं है, मतलब आधे घंटे
0: सेलिब्रेशन के लिए.
1: परफॉर्मेंस से आधे घंटे पहले से थोड़ा सा परहेज करो. मतलब ये है कि नॉर्मली आइसक्रीम भी खा लेता हूँ मैं, मतलब ऐसा ज्यादा बहुत तेल वाला खाना नहीं खाना, लेकिन बहुत तेल वाला जो बनाता है खाना तो फिर तो सब, मतलब सबके लिए ही बेकार है, वो आपके लिए भी बेकार है, मेरे लिए तो है ये गले के लिए. तो हाँ, चिकन रोल हो गया, नॉन वेज तो कुछ भी दे दो, वेज

0: भी दे दो,
1: आने दो, है ना,
0: आने दो।
1: वो किसी ने पूछा ना पंजाबियों से कि सवेरे की करोगे, सवेरे रोटी खावांगे, शाम नो रोटी खावांगे, पाजी रात नो, रात नो पाजी सोवांगे, सारा दिन रोटी थोड़ी ना खाई जाएंगे। तो खाने पीने के शौकीन तो है ही। लेकिन एक बात और कर लेते हैं हम, आपने बोला कि पंजाबी म्यूजिक की हमने बात की है, आपको लग रहा है आने वाले समय में वर्ल्ड वाइड पंजाबी म्यूजिक जो है वो कहर भर पा रहा?
0: आने वाले समय तो अभी भी कर रहा है, देखो
1: राइट,
0: अभी भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि बहुत, मतलब नॉट ओनली पंजाबी, जो इंडी, जो इंडिया का पॉप म्यूजिक है, मतलब देखो पंजाबी तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है,
1: राइट,
0: बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। और तो एक चीज तो श्योर है कि आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बहुत टॉप पे होने वाला है। लाइक पहले होता था ना कि चलो आज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आज जैसे बॉलीवुड में कोई गाना गाना होता तो कोई देखता नहीं है कि यार कोई मुझे वो, मतलब ये कोई एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्टर है मुझे चांस दे दे, या मुझे ये चांस दे दे, वो चांस दे दे, आज कोई देखता नहीं। आज तो ये होता है कि सीधा अपने गाने बनाओ, अगर आप ले रहे हो आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हमारे पास चैनल है हम रिलीज कर देते हैं।
1: आप क्या एंजॉय करते हैं, प्लेबैक सिंगिंग के भी ऑफर बहुत मिल गए होंगे आपको, या आपको लगता है लाइव शोज ये ज्यादा चार्मिंग होते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, देखो सिंगर के लिए लाइव शोज भी इम्पोर्टेंट है, और सिंगर के लिए अपने गाने बनाना और अपने गाने रिलीज करना, अपना जो आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो शोज भी इम्पोर्टेंट है और अपने गाने बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको प्लेबैक करनी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा सीन ये है, मेरा सीन ये है कि अगर प्लेबैक मैं करूं, अगर कोई सामने से आके मुझे बोल रहा है कि यार मनराज ये करना है, मैं श्योर सर बिल्कुल करेंगे, और मैं कभी भी इस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागूंगा कि लाइक मुझे प्लेबैक में मेरे को गाना चाहिए। मेरे सिर्फ दो ही डायरेक्टर बहुत फेवरेट हैं, मैंने बोला है पहले भी, एक है प्रीतम सर और एक है AR रहमान सर।
1: वाह।
0: तो अगर मैं दिल से फॉर एग्जांपल मुझे होगा ना कि यार मुझे प्लेबैक करना है इनके साथ, मतलब अगर थोड़ा सा वो आएगा ना कि यार प्लीज़ दे दो, तो वो इन दोनों के साथ ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज मेरा ये है कि अपने गाने मुझे करने हैं, कोई चांस देगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्शंस, मतलब क्या है कि मेरे म्यूजिक को रिलीज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरा आर्ट है वो मैं गाने बनाऊंगा, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन में मैं ही करता हूँ, ठीक है, म्यूजिक कंपोजिशन कर लेता हूँ, हमारी अपनी जो है कंपनी है, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, किसी की चांस की जरूरत थोड़ी है।
1: जो हो जाए वही बढ़िया। दिलजीत पाजी के हम बात कर रहे थे, अब वो मूवीज में भी आ गए, आपको अगर मूवी का ऑफर आया तो यू विल गो फॉर इट?
0: मूवी का ऑफर, मूवी का नहीं पता, नहीं मूवी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है।
1: ओके।
0: हालांकि मूवी के लिए गाने देने हैं तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
1: चलिए, दो बड़े नाम आपने लिए, प्रीतम एंड श्री AR रहमान, उनका कोई फेवरेट गाना हो जाए।
0: हो जरा से दिल में दे जगा तू, जरा सा अपना ले बना

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत सारे
0: ही
1: गाने
0: खूबसूरत।
1: अभी तुम सर के यार मतलब बता नहीं सकता मैं, सारे ही फेवरेट है मेरे तो।
0: ये ऑल टाइम है ना, और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है।
1: हाँ
0: दिल्ली का वेदर कभी भी आपके बॉस या गर्लफ्रेंड के मूड की
1: हाँ
0: तरह बदल सकता है, लेकिन करवट
1: सही बात
0: जरूर ली है। मौसम इतना शानदार है, इस मौसम को देखते हुए कोई गाना, बरसात के मौसम को देखते हुए, सावन को देखते हुए
1: अच्छा
0: कोई गाना।
1: बरसात को देखते हुए देखो मेरा अपना ओरिजिनल गाना है तो मैं दूसरा क्यों कहूँ, है ना? ठीक
0: इसे कहते हैं प्रमोशन।
1: है, या प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए।

0: क्या बात हो जाए, बात तो बन ही गई
1: इसमें
0: है।
1: इसमें कवि कह रहे हैं कि तू और मैं साथ चलें जब जाना बरसात हो जाए, और भीगे साथ अगर तो
0: लगता
1: क्या ही फिर बात हो जाए।
0: क्या बात है, कवि ने सुन ली है हमारे मन की बात भी। वेल, मन की बात अगर हम करें, आपके दिल में बहुत कुछ होगा आई एम श्योर। आपने जब शुरुआत की थी तो आपको लग रहा था कि मतलब मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट बनूं, लेकिन उसके बाद इंडियन आइडल ने आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया? इंडियन आइडल क्या, किस स्तर पर आपको लेकर गया, और उसके बाद क्या चेंजेस आपने देखे लाइफ में?
1: इंडियन आइडल से देखो बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, मेरे म्यूजिक जो मैं करियर की बात करूं उसमें। क्योंकि क्या होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए एक किक की ज़रूरत होती है, एक जो पुश मिलता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट आप उस स्पेस में आ जाओ कि आप काम कर सको आगे, नॉट कि आपको फेम मिल जाए या पैसा कमा लो। नहीं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत कंपटीशन भी है इसमें इंडस्ट्री में, ठीक है। म्यूज़िक लाइन में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से उठ के एक इंडस्ट्री के अंदर आना और इतना फेम मिल जाना, इंडस्ट्री के लोगों तक पहुँचना, वो जो काम है ना, वो काम इंडियन आइडल ने किया है मेरे लिए। बिकॉज आइडल से पहले लाइक हम यही देखते थे कि मतलब किसी को इंस्टा पे DM करना कि यार एक गाना रिलीज़ करना है, ये लेबल का कॉन्टैक्ट चाहिए, फिर मतलब नंबर निकाल निकाल के कॉल करते थे कि ये लेबल चाहिए, ये चाहिए। अब क्या हो गया कि अब वो काम बहुत ईजी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अब आप हाई भी भेजोगे ना तो सामने से अच्छा रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ सर क्या चाहिए आपको, बताओ अवेलेबल। तो मतलब ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज आया है, तो ये इंडियन आइडल की वजह से ही है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ना ये चीज़ जो फ्री फ्लोइंग जो चीज़ होती है, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, अब मुझे जहाँ रिलीज़ करना है, कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें एक मैं वो अकेला काम नहीं कर सकता। एक गाने को चलाने के लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे सिंगर तो हो गया, लिरिक्स राइटर हो गया, म्यूज़िक कंपोजर हो गया, फिर कंपनी हो गई, फिर उसकी प्रमोशनल कंपनीज हो गई, कहाँ प्रमोट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है एक। तो वो टीम वर्क साथ में बंदे अपने साथ जोड़ना, ठीक है, तो इतने अच्छे लेवल पे आके अच्छा सर्कल बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो ये जो काम किया है मेरे लिए, ये इंडियन आइडल ने किया है। हालांकि अभी कहानी, मेरा मानना ये है कि अब यहाँ से स्टार्ट है। आइडल ने तो पुश दे दिया कि करो, मतलब आपको मैदान में छोड़ दिया है ना, आइडल ने आपको लाके मैदान में छोड़ दिया, अब तुम जितना कर सकते हो करो। ये है, अब मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना म्यूज़िक बना के, मतलब सब मेरे ऊपर है। अब यहाँ से आप यहाँ से कितने बड़े बनते हो, अपने आप को संभालना है
0: बहुत जरूरी है।
1: यस,
0: तभी एकदम चिल मोड ऑन।
1: अब नहीं, क्या कह रहे हो, आराम? हाँ। आराम तो बिल्कुल नहीं करना।
0: क्या दिनचर्या रहती है अभी?
1: अभी के लिए थोड़ा ये है कि हम ना एक साल से, जैसे क्या है कि एक साल से हम, हमारा रोज का रूटीन था, सुबह उठना है, पूरा दिन गाना है, पूरा दिन रिहर्सल्स हो रही हैं, फिर शूट पे जा रहे हो, मंडे टेक्निकल, ट्यूसडे को शूट हो रहा है, दो दिन का शूट हो रहा है लगातार। शूट होने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, चलो जी अगले शूट की तैयारी करनी है। तो एक साल से ये चल रहा था, गा गा के बॉडी भी मतलब हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, गला भी पूरा एग्जॉस्टेड है अभी भी। और एक मतलब उस स्पेस से निकल के यहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल अपने होम टाउन आके, घर आके, मतलब जब आप बैठे होते हो ना, तो फिर सोचने का मौका मिलता है कि अब मुझे एज एन आर्टिस्ट क्या करना है। क्योंकि अभी एक साल तक बस वही था कि फिल्मों के गाने गा रहे हैं हम, ओल्ड सॉन्ग्स गा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जा कर के सोचने का मौका मिल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे गाने बनाने हैं, तो ये थोड़ा माइंड भी रिलैक्स।
0: क्या चल रहा है माइंड में?
1: थोड़ा
0: व्हाट्स नेक्स्ट?
1: हाँ, नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट मैं अभी EP प्लान कर रहा हूँ।
0: ओके।
1: हाँ, EP में 5 गाने होंगे एंड वो मैं रिलीज करूँगा सितंबर में। उसमें देखो कि आई एम ट्राइंग कि अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, सबके साथ कोलैबोरेट हो, मतलब उस EP में नहीं, EP के आगे भी एल्बम करनी है। बट अभी सितंबर में एक मेरा प्लान है कि EP रिलीज करूँ मैं, 4 से 5 गाने के। मतलब बेसिकली आपको बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल म्यूजिक लोग सुने, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ही काम करना है। और जितना जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि आइडल से अभी भी निकला हूँ तो लोग थोड़ा जानते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं नहीं अगर एक्टिव रहूँगा तो फिर धीरे धीरे फेड हो जाता है आर्टिस्ट। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यही है कि बहुत सारे गाने निकालने हैं। सितंबर में EP करूँगा, फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर एल्बम कर दूंगा, फिर मतलब बीच बीच में सिंगल्स आते रहेंगे, शोज भी होते रहेंगे,
0: लाइव शोज
1: होते रहेंगे।
0: आई एम श्योर अभी ऑफर आ रहे होंगे काफी सारे।
1: हाँ जी, ऑफर तो आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं टूर पे भी जा रहा हूँ बाहर।

0: अक्टूबर में,
1: आउट ऑफ इंडिया?
0: यस यस आउट ऑफ इंडिया अक्टूबर में, उस पर यूएसए, कनाडा, वेस्ट इंडीज, इन सब जगह पे टूर है। ये एक महीने का टूर है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर कुछ प्राइवेट इवेंट्स भी हैं, कॉलेज फेस्ट भी है, चलता रहेगा ये सब। तो आर्टिस्ट की लाइफ में यही तो है, गाने बनाने, शो करने हैं।
1: कहते ना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतली हैं, हर किसी को अपना किरदार निभाना।
0: लोगों को एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ना है बस, जैसे वो चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो फेस्ट हो, चाहे गाने बनाने के थ्रू हो, बस लोगों को एंटरटेन करना है, क्योंकि लोग आपको इसीलिए प्यार करते हैं।
1: आजकल वैसे देखे ना तो यंगस्टर्स काफी जल्दबाजी में रहते हैं, खासकर जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं। हर कोई सिंगिंग करना तो चाहता है, लेकिन वो एफर्ट, वो कितना कुछ समय लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने आपको तैयारियां करनी पड़ती है उसके लिए, ये बहुत कम हो गया है लोगों में। यंगस्टर्स से कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: मैं यही बोलूंगा, देखो पहले तो मैं बोलने से पहले अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, शायद वो कुछ लोगों को मोटिवेट कर जाए काम करने के लिए उनके। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऑडिशन दिया आइडल का और मैं पहुँच गया, नहीं, मैंने इससे पहले भी दो तीन बार, मैंने इससे पहले तीन बार तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। उसके पहले भी मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है जिसमें वीडियोज़ भेजते हैं। तो ये कि कभी भी रुको मत, अगर आप फेल हो रहे हो तो आप देखो कि आप क्यों, आप अगर आज ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए तो आप क्यों रिजेक्ट हुए हो, किस बेसिस पे आप रिजेक्ट हुए हो। अगर कुछ आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। आप अपने ऊपर काम करो कि हो सकता है ये कमी हो, शायद मैं इसको मुझे सुधारना चाहिए। अगर मेरे अभी सुर कच्चे हैं तो मैं एक साल और रियाज करूँगा, सुर पक्के कर लूँगा, दोबारा ऑडिशन में आऊँगा। बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं। तो मैं जितनी बार भी रिजेक्ट हुआ हूँ, मुझे उतनी बार अलग अलग चीज़ें समझ में आई हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सुर पक्के करने हैं तो हाँ मेरा रियाज चालू, और रियाज मतलब अगर मैं दो घंटे रियाज करता हूँ तो चार घंटे का चालू, ठीक है। अगर मुझे गाने नहीं याद या मेरी प्रेजेंटेशन वीक है तो उसके ऊपर काम करना, क्योंकि ये सब जब सारी चीज़ें आप करते रहते हो उसके बाद ही आप अपने अंदर मास्टरी लेके आओगे ना। तो जितनी बार आप फेल हो रहे हो आप उससे डरो मत, और कभी भी ट्राई करने से मत डरो। और बस मेरी यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो भी म्यूज़िक कर रहे हैं उनको मेरी यही सलाह है कि म्यूज़िक को ना, मतलब अगर आपका पैशन है, पहले आपको म्यूज़िक को ना रिस्पेक्ट करना है। म्यूज़िक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं क्लासिकल म्यूज़िक बोलूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक, मतलब नॉर्मली म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ है, वेस्टर्न भी, क्लासिकल भी, रॉक भी, एवरी जॉनर ऑफ म्यूज़िक, सैड हो, रोमांटिक हो, म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करो पहले। और साधना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक गाना सुना और आपने ऑडिशन में जाके परफॉर्म कर दिया, फिर बोलो अरे यार मैं तो अच्छा गा रहा था, इन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। बट क्यों, क्या, क्योंकि जो आपको जज करने बैठे हैं ना वो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं। वो आपको बोलेंगे नहीं कि यार तूने ये चीज़ गलत कर दी, नहीं। और वो इसीलिए नहीं बोलते, वो यही चाहते हैं कि इसको खुद समझ में आए कि ये क्या गलती कर रहा है, क्योंकि सारी ज़िंदगी कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा ना, आपको वो खुद समझना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपने ऊपर बार बार, एक होता है ना ओवर थिंकिंग भी अगर इंसान सही जगह करे ना तो वो काम, मतलब वो फिर अच्छी होती है।
1: वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जब आप ओवर थिंक करते थे आपके दिमाग में कौन सा गाना चलता था, जब मनराज निराश हो जाते थे तो?
0: मैं ओवर थिंक हमेशा इसी में करता था कि यार मुझे अब क्या करना है, क्या मैं ये कॉम्पोजिशन ऐसे कैसे गाऊं, इसमें कौन सी फील से गाऊं, मतलब मैं ये सोच रहा था। मतलब लोग ओवर थिंक करते होंगे, हाय इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, अरे वो नाराज़ हो गया या ये वो हो गया, मैं ये सब सोचते नहीं, मगर नहीं, मैं गाने में मुझे ये परफॉर्म करना है, मैं इसको ऐसे करूं या वैसे करूं, बस ये चलता रहता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, ये चीज़ करो। और गाना,
1: वो गाना ऐसा रहता है ना हमारी लाइफ में जो हम गुनगुनाते हैं लूप में, और हमें लगता है कि हाँ मतलब कि अब हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन तो आएगा जब जीत जाएंगे, समथिंग लाइक दिस।
0: हाँ, मैं एक बताता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए, मैं कभी ऐसा कोई मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं है किसको कि अगर मैं लो फील कर रहा हूँ या कुछ फील कर रहा हूँ तो मैं ये वाला गाना गाऊँ, पर्टिकुलर नहीं। मैं जब भी लो फील कर रहा होता हूँ ना तो मैं सिर्फ म्यूजिक ही सुनता हूँ, म्यूजिक, मतलब कि मैं गाने चला के साथ में गाने गाता रहता हूँ, एक डेढ़ घंटा मैं खुल के गाने गाऊंगा। तो क्या होता है फिर, वो जो एक डेढ़ घंटे के अंदर ना वो लो वाले एंगल से बाहर आ जाता हूँ मैं।
1: अच्छा, आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे कौन सा गाना रहता है सबसे ऊपर, टॉप पे?
0: सबसे ऊपर टॉप पे, हाँ टॉप पे सबसे पहले जो मैं गाना वो मैं सुनता हूँ, मतलब वो काफ़ी मेरे से जुड़ा भी हुआ है। और

0: रिस्पेक्ट करता हूँ उस गाने की। एक तो मैं वो गाना है की बनू दुनिया दा बाई गुरदास मान साहब एंड दिलजीत दोसांझ साहब,
1: हो जाए कुछ लाइनें हो जाए
0: तो कुछ भी होता ना। फॉर एग्जांपल शो भी कर रहा हूँ मैं, तो शो की भी स्टार्टिंग में यार फोक गाना तो इससे बेटर कोई गाना है ही नहीं, और इतना इतना अच्छा इस गाने में बोला गया कि यार की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहेगुरु जाने। मतलब कि एक बेसिक सिनेरियो होता है ना कि यार किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ उसको पता है, तो उस पर छोड़ो, अच्छा काम करते रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो, जस्ट वन लव एवरीवन,
1: वन लव और हम
0: एक
1: भी
0: प्यार है,
1: प्यार ये सारा प्यार आपसे करते हैं, लेकिन लाइनें हो जाए,
0: लाइनें बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाय
1: क्या बात है, जो तेरे नसीब का है वो तेरे कोल ही आएगा। उन्हें हर रोज पौंड दी फरमाइश ना कर।
0: क्या बात है,
1: ऑल इंडिया रेडियो पे पहले भी आया या फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं यहां पर?
0: दिस इज माय फर्स्ट टाइम।
1: ओके, कैसा लग रहा है, कैसा फील?
0: बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। एंड मतलब ये भी आर्टिस्ट के सपनों में होता है कि यार मैं पॉडकास्ट में जाके बैठूं। हां अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब क्या होता है कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं और
1: मनराज को हमने स्टेज पे तो देखा है, लेकिन स्टेज के पीछे मनराज क्या है, मनराज क्या क्या पसंद करता है? खाने में तो आपने बता दिया, सिंगिंग में भी आपने बता दिया।
0: मैं बताऊं तो मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा फन करने में भाई। बस अपने में रहो, मजे करो। मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे शो चल रहा है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ऐसे ही बैठना है, एक कैमरा लगा हुआ है, ऐसे पीठ सीधी करके बैठो, ऐसे मतलब फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाओ अंदर से डायरेक्टर अबे यार ऐसे फिर से बैठो। तो मतलब जब ये होता ना कट हो गया, फिर हाँ फिर अपने मस्ती हूँ बैठे हुए। तो वो वाली चीज़ है, मतलब अपने में रहना बिल्कुल पसंद है। बैक स्टेज वही करने में मजा आता है। खाओ, सबको प्यार बांटो, खाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूजिक।
1: वो पार्टी वाली वाइब भी होती है कभी कभी। हाँ, दिल्ली से वो लड़का और पार्टी ना करे ऐसा हो नहीं सकता।
0: देखो पार्टी हम कर नहीं पाए क्योंकि हमें अलाउड नहीं थी। बस पार्टी करना किसको नहीं पसंद। बट
1: मतलब पार्टी कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है, थोड़ा सा नाच गाना हो गया।
0: मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जहाँ पे स्टे कर रहे थे सारे कंटेस्टेंट्स, तो रूम में क्या करते थे ना हम रोज रात को, जैसे सुबह प्रैक्टिस, सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात तक प्रैक्टिस चली, प्रैक्टिस खत्म, प्रैक्टिस होते के बाद ही हम सारे अपने आप को रिफ्रेश करने एक रूम में इकट्ठे होते थे और वहीं गाने वाने चला के उनो खेल रहे हैं, ठीक है, डाइट कोक पी रहे हैं, मंगा रहे हैं मस्त अपना, मतलब खाना पीना चल रहा है उधर, सब मस्ती कर रहे हैं, गाने बजा के डांस कर रहे हैं, जिसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है वो डांस कर रहा है, कोई नींद से उठ के आ गया मस्त, कह रहे हैं यार मेरा सर दर्द हो रहा है। मतलब ये है कि
1: चिल मोड,
0: सारी रिहर्सल के बाद सब जब एक साथ बैठते थे ना तो चिल मोड हो जाता, तो मतलब वो सारे पूरे दिन की थकान निकल जाती थी।
1: कितना टाइम पीरियड रहता है, मतलब एक शो से पहले कितना समय आपको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए?
0: एक शो से पहले जैसे जिस दिन शूट होता है उसके एक दिन पहले टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल पे पूरा दिन हमारा शूट होता है। टेक्निकल शूट हो गया 24 घंटे, मतलब नॉट 24 घंटे, जैसे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ और रात को 11 बजे तक टेक्निकल शूट चल रहा है, फिर उसके अगले दिन दोबारा 9 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे शूट चल रहा है। और मंडे ट्यूसडे शूट होता है, सैटरडे संडे वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो जैसे ही हमारी एक शूटिंग ख़त्म हुई, एक शूटिंग के बाद नेक्स्ट जो हमने गाना होता है वो शूटिंग ख़त्म होने के बाद ही हमें गाने मिल जाते हैं कि आपको अगले वीक ये गाने गाने हैं और कल से तुम्हारी दोबारा बैंड रिहर्सल। मतलब शूट अगर रात को 12 बजे ख़त्म हुआ तो हमें 11-12 घंटे का सब

0: रेस्ट ले लिया, और आई थिंक इनफ होता है इतना रेस्ट, 11-12 घंटे का रेस्ट लेके सो के आराम से, उसके बाद फिर अगले वीकेंड पे हमने क्या क्या करना है उसकी मीटिंग चालू, फिर सेम प्रोसीजर वही लूप में चलता रहता है। थीम्स चेंज होती रहती हैं, नेक्स्ट वीक ये आर्टिस्ट आ रहे हैं तो इनके गाने हम गाएंगे, नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा जैसे आशा भोसले जी को हमने करना है, सेलिब्रेट करना है तो वो हम गाएंगे, फिर ललता, फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी का वो आगे से, मतलब कि शूट खत्म होते कि 1 घंटे बाद ही हमें नई लिस्ट मिल जाती थी कि ये अब उन्हें अगले वीक गाना है।
1: मस्ती चलती जा रही है बस। और जब मस्त मौला हो जाते हैं आपके दिमाग में कौन सा ऐसा गाना आता है, इसलिए मैंने वो वाइब पूछा था आपसे।
0: मस्त मौला होके तो यार
1: एकदम कि अब कोई फिकर ही नहीं।
0: मैंने बोला मेरे को तो दोनों ही सिचुएशन में मेरे मैं गाने ही गाता हूँ।
1: और ऐसा
0: कुछ मतलब वो नहीं है कि मैं एक यही मतलब पर्टिकुलर एक यही सॉन्ग गाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब ये होता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्या मैं सबसे ज्यादा गाना सुन रहा हूँ तो वही गा देता हूँ।
1: हाँ तो एक हो जाए ना कुछ लाइन। एनी पार्टी सॉन्ग
0: गाना तो गाना पड़ेगा है। पान पुदीना देखा नाका नगीना देखा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देखा चांद ने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा पपरा परा पपरा परा पपरा परा परा हे तेरी बात मेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेके आलू भात पूरी भात मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने

0: जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त छोड़ ना जाने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना।
1: क्या बात है, हम भी नहीं मान रहे हैं बैक टू बैक। चलिए, इंडियन आइडल में आपने ढेर सारी परफॉर्मेंसेस दी, आपका फेवरेट कौन सा था, सबसे फेवरेट, जो सबसे, आज भी सबसे टॉप पे रखेंगे आप, कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता?
0: मतलब बेस्ट मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने जो अपना गाया है बिल्कुल 100% देख ही गाया है। बट कुछ गाने, मतलब नॉट एक, कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत मेरे फेवरेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे पहला ऑडिशन, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, वो हो गया। उसके बाद गाना कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, तो वो। और एक एपिसोड में दिलेर मेहंदी पाजी भी आए थे, उन्होंने गाया था हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाए। तो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जब थीम चल रही होती है ना, उसके बीच में जब ऐसे ही गाने गाने को मिलते हैं तो फिर उसकी एनर्जी अलग ही होती है। मैंने आपको बताया थीम चल रही थी 60s 70s 90s, सेलिब्रेटिंग आशा भोसले जी, सेलिब्रेटिंग लता मंगेशकर जी, सेलिब्रेटिंग किशोर कुमार जी, सेलिब्रेटिंग रफ़ी साहब। तो उस जोन से निकल के जब ये अपने जोन में आने का मौका मिलता है ना, तो फिर वो अलग एनर्जी। इसलिए ये सब मेरे फेवरेट हैं, हो जाएगी बल्ले बल्ले, बदतमीज़ दिल, और जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो ये सब जब गाने का मौका मिलता है तो फिर वो सी मेरे सारे ही फेवरेट हैं।
1: ठीक है, टाइम फॉर द रैपिड फायर। सारे सवालों के सही जवाब आपने दिए हैं, और क्या कहूँ, कॉन्वर्जेशन बहुत कमाल का रहा है। चलिए, एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कीजिए, वन वर्ड।
0: फियरलेस।
1: फियरलेस। नेक्स्ट इज लता मंगेशकर या आशा भोसले?
0: आई पिक आशा भोसले जी।
1: ओके, अरिजीत सिंह या सोनू निगम? अच्छा। जल्दी जल्दी, रैपिड फायर है सर।
0: अरे यार, अरिजीत सिंह।
1: ओके, चलिए, वेरी गुड। स्टेज शो या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग।
1: सबसे पसंदीदा राग कौन सा आपका?
0: राग राग राग राग राग दरबारी।
1: ओके, पसंदीदा खाना?
0: नॉनवेज।
1: ओके, एक ऐसा गीत, एक ऐसा गाना जो आप कभी भी गा सकते हैं, कभी भी गुनगुना सकते हैं 24/7, सोते सोते भी उठा दे तो आप कहेंगे ये गा सकता हूं मैं।
0: की बोलूं दुनिया था।
1: ओके, एक लाइन के साथ, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम।
0: ओके, ओ की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह गुरु जाने की बनू दुनिया दा है, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साई बोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी हो।
1: क्या बात है, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा?
0: मेरी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल होगा
1: दमन राज, मन पे राज करने वाला है, कुछ और, एनीथिंग, जो भी माइंड में आ रहा हो।
0: हार्ट थ्रोब। हार्ट थ्रोब।
1: ओके, अगर आपको आज अपने बचपन वाले वर्जन से मिलने का मौका मिले मनराज, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे, कि हमने कर लिया या कुछ और बाकी अभी?
0: मैं उससे यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच ये सब सपने देखने के लिए, बिकॉज नहीं देखता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता।

0: क्या बात है, एक मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए जो आकाशवाणी ऑडियंस है उनके लिए कुछ।
1: मेरा मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ और लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप सबके प्यार की वजह से ही हुआ है ये सब। हार्ट थ्रॉब ड्रीम बॉय, ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी एल्बम्स आएंगे, जितने भी EPs आएंगे और जितने भी शोज होंगे, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को एंटरटेन करने में, और आप लोग भी अपना प्यार देने में कोई कसर मत छोड़ना। थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट YouTube चैनल पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है. सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया. मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें. दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है.
2: Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow today on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The National Skill Development Cooperation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. In football, East Bengal FC have lifted the Durand Cup for a record 17th time, ending a 22-year wait for the prestigious trophy after defeating arch-rival Mohun Bagan Supergiants 4-1 in the final in Kolkata this evening. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओ, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश। श्रोताओ, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके मन पसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, आपकी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना ईमेल हमारे पास भेज देना है, अपने मनपसंद गीत के साथ, अपने नाम के साथ, और आप कहां से भेज रहे हैं उस जगह के नाम के साथ। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता देती हूँ, ipradiodelhi@gmail.com। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, इस गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है अनवी, मीनू और अमन ने हिसार हरियाणा से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म अनवर से और आवाज़ थी रूप कुमार राठौर जी की। और इसी के साथ चलते हैं हम मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। सबसे पहला मैसेज हम ले रहे हैं जो कि आया है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सुबीहा अंजुमन खान, आपका तहे दिल से शुक्रिया के साथ हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है फारूक अली खान जी का, जो कि कहाँ से लिख रहे हैं हमारे पास ये नहीं लिखा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुक हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, नांगलोई दिल्ली से जो आया है मदन चक्रवर्ती जी और राजेंद्र चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा का

कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जो आया है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया जी सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। साथ में है गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता का कनेरा मोहल्ला पटियाला से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव कल्याण मल्ल का, जिला भटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास आया है पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर बिहार से जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता और सानवी गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बंजारा लेआउट नागपुर से अनिल कोहले, छाया कोहले, प्रियांश कोहले धन्यवाद के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में है प्रमोद कुमार डुडी और पुष्पेंद्र कुमार डुडी। बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन आगे चलने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा आपकी फरमाइश का गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म पैडमैन से। आवाज थी अरिजीत सिंह की। और चलते हैं और मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास लगातार बहुत सारे आपके आ रहे हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। अनवी, मीनू और अमन लगातार हिसार हरियाणा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से श्यामला प्रकाश, अश्विनी आनंद, मनवित, शुक्रिया के साथ हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। किशोर नगर अमरावती से हमारे पास मैसेज आया है हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुंडाने जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बब्बी अनविका, तनुश्री गुप्ता का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। हमारे पास आया है नियमित श्रोता एके पांडे मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं बारिश का मौसम है इसलिए बारिश से संबंधित फिल्मी गाने सुनवाए। आपकी

फरमाइश हमने सुन ली है। अगला मैसेज हमारे पास आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी मराठा, भाऊ मराठा, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कालका से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारा लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। आदाब अर्ज के साथ हमारे पास मैसेज आया है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली का, जो कि हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज सेक्टर 67 मोहाली से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए टीडी मल्होत्रा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम राम के साथ हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दिल्ली नांगलोई से राजेंद्र जतोलिया, उषा जतोलिया, चारू जतोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का। लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है, प्लीज हमारी भी फरमाइश पढ़िए, लोगों को समझने का हुनर हम में नहीं, जो दिल में आया वही कहा हमने सही, भीड़ के साथ चलना हमें नहीं आता, इसलिए आज भी अकेले चलते हैं हम। ये कहना है चारू जतोलिया, राजेंद्र जतोलिया, दिल्ली नांगलोई से। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से है नारायण खर्चे जी, लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। बहुत सारे और भी मैसेजेस हैं लेकिन लगातार जो एक साथ मैसेज आते हैं उनकी वजह से उन लोगों का मैसेज हमारे पास नहीं आ पाता है जो कि पहली बार हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि संबंधों की दुनिया गुलजार वहां पर होती है जहां पर संबंधों की बुनियाद भरोसे पर होती है, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे भी नज़ारे देखने को मिलते हैं जहां भरोसा होने के बावजूद भी दिल के किसी कोने में भरोसे की दीवार डगमगा जाती है। ऐसे हालातों में खुशियां भरपूर होने के बावजूद भी खुलकर खुशियों का जिक्र करना बड़ा मुश्किल होता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं गाने की फरमाइश हमारे पास आई है शिवानी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए भी। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है अश्विनी चुग जी का, पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में हैं आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे, भाविक ढिंगरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारा पास आया संभल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म आकाश से। आवाज थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की। चलते हैं अगले मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास लगातार आपके पहुंच रहे हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ आज चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है फजिल का, पंजाब खेड़ा, पंजाब से खेड़ा परिवार का। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैसेज हमारे कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है, वी आर लिसनिंग द प्रोग्राम, आपकी फरमाइश, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड ऑल टाइम हिट सॉन्ग्स, योर्स बिग थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम। ये हमारे पास मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी

प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए। संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता और अनिकेत भटकर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा का पंचकुला सेक्टर 11 से, अतुल शर्मा जी का साथ में अश्विनी चौक भी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू चौधरी, देविका चौधरी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, नसर अंसारी, असद अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, दिल से दुआ के साथ सदा खुश रहो जी कि दुआओं के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब के साथ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। फजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहा है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि लगातार हमारे पास उन्हीं श्रोताओं के आ रहे हैं जो कि हमने पहले पढ़ लिए हैं। ऐसा नहीं करिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साई राज सपकाल और विशाल सपकाल लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

श्रोता, ये गीत हमने लिया था फिल्म सिर्फ तुमसे आवाज़ थी उदित नारायण जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश मेरे यानी रचना अग्निहोत्री के साथ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार सिंघनकर और अर्पिता जी, हम पूरा कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा कार्यक्रम सुनने के लिए और बहुत बहुत स्वागत भी। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। आपका आज का प्रोग्राम सालों साल याद रहेगा जी, सदा खुश रहो के आशीर्वाद के साथ, दुआओं के साथ छोटे अंसारी जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। शिवानी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया।

0: पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद भी लगातार गोविंदपुरा अहमदनगर से लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।
1: बरसों बाद यूं खुद में निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सर्दी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म आंधी से। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की। इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है ग्राम लासूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। अस्तुपुरा, जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी के साथ लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मल्लिकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्ची जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं कार्यक्रम के अगले अंतिम गीत की तरफ।

श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश को यहीं पर समेटने की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर।

0: श्रोताओं, 12 बजने को हैं। इन सभी मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा के नाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
4: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The National Skill Development Corporation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration affirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS chairship 2026. In Madhya Pradesh, 9 people trapped in the strong current of the Gadheri River in Sagar district were safely rescued by a joint team of police, SDRF and Home Guards. Heavy rain on August 22 caused the river to rise near the Apchand caves. The rescue team trekked nearly 4 kilometers through dense forest and difficult terrain before SDRF personnel entered the river and rescued all 9. They were given medical checkups and found safe before being reunited with their families. The Kailash Mansarovar Yatra through Sikkim's Nathula route concluded with 464 pilgrims completing the pilgrimage in 10 batches. The Yatra, which began on 20th June, concluded with the return of the final batch of pilgrims to Gangtok. The pilgrims visited Mount Kailash and Lake Mansarovar in the Tibet Autonomous Region of China. In football, East Bengal FC entered the main draw of the AFC Women's Champions League 2026-27 by beating Malaysia's Sabah FC 2-0 in their final Group A preliminary stage match in Kota Kinabalu. In men's cricket, India were 300 for 5 in their first innings against host Sri Lanka at stumps on day one of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurail and Saransh Jain were at the crease at the draw of stumps last evening. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, आज के सुरों के सफ़रनामा में हम उस शायर और गीतकार की कहानी लेकर आए हैं जिनकी कलम ने मोहब्बत को भी आवाज़ दी, दर्द को भी ज़बान दी और भक्ति को भी उतनी ही श्रद्धा से शब्द दिए। नाम था शकील बदायूनी जी। 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में शकील अहमद जी का जन्म हुआ। उनके पिता मौलाना जमील अहमद जी थे। बचपन से ही उन्हें उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम घर पर मिली। बाद में उन्होंने बदायूं के इस्लामिया हाई स्कूल से पढ़ाई की और 1942 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। कहते हैं कि शकील जी के भीतर शायरी का बीज बहुत पहले पड़ चुका था। बदायूं की साहित्यिक और मुशायरों की फिजा ने उनकी कल्पना को पंख दिए। आगे चलकर यही शायर हिंदी सिनेमा के गीतों की दुनिया में एक ऐसा नाम बना जिसके लिखे गीत आज भी इतने सालों बाद भी सीधे दिल में उतर जाते हैं। फिल्म दुलारी का ये गीत, ये फिल्म आई थी 1949 में।

शकील बदायूनी जी की पहचान एक फिल्मी गीतकार की ही नहीं थी, फिल्मों में आने से पहले वो बाकायदा एक शायर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके

से महसूस कर सकते थे। 1940 के दशक में उनका नाम मुशायरों में पहचान बनाने लगा था, मगर उनके भीतर एक और सपना था, और वो सपना था मुंबई जाकर फिल्मों के लिए लिखना। आखिरकार उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया और 1944 के आसपास मुंबई पहुंच गए। उस समय ये फैसला उतना आसान नहीं था, लेकिन शकील जी जानते थे कि उनकी असली मंजिल उनकी कलम के साथ है।

1952 में आई फिल्म बैजू बावरा शकील बदायूनी के करियर का एक ऐसा पड़ाव बनी जिसने साबित कर दिया कि उनकी जो कलम है वो कलम उसको कहीं सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने उनकी कलम ने सिर्फ इश्क और जुदाई तक सीमित नहीं है, फिल्म की कहानी संगीत के इर्द गिर्द थी और गीतों में शास्त्रीय संगीत की गहराई चाहिए थी। नौशाद जी और शकील जी ने मिलकर ऐसे गीत रचे जिनमें राग भक्ति और भावनाओं का अद्भुत मेल दिखाई दिया। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये गीत इसको आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। ये गीत आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे प्रसिद्ध भजनों में से एक गिना जाता है। इसी फिल्म में तू गंगा की मौज और आज गावत मन मेरो जैसे गीत भी थे। शकील जी की खासियत ये थी कि वो एक मुस्लिम शायर होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तानी सांस्कृतिक परंपरा और भक्ति की भावनाओं को पूरी श्रद्धा से शब्द दिए। यही वो दौर था जब शकील बदायूनी जी की कलम ने ये साबित कर दिया कि अच्छी शायरी की कोई मजहबी सीमा होती ही नहीं है, उसका रिश्ता सीधे इंसान के दिल से होता है। आप भी सुनिए और इसको दिल से महसूस कीजिए।

दोस्तों, शकील बदायूनी जी की शायरी का एक खूबसूरत पहलू ये था कि वो दर्द को सिर्फ बयान नहीं करते थे, उसे महसूस करवाते थे। फिल्म अमर के गीत ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते में उन्होंने दर्द को एक अलग ही रूप दे दिया, जैसे कह रहे हों कि अगर ज़िंदगी में गम ना होते तो इंसान अपनी भावनाओं की गहराई को कैसे पहचानता। इसी दौर में उनका एक और रूप सामने आया, भक्ति और इंसाफ की आवाज़। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, जैसे गीतों में उन्होंने इंसाफ और ईश्वर के सामने इंसान की बराबरी की बात कही। शकील जी की कलम में यही विविधता थी। कभी वो प्रेमी के दिल की धड़कन लिखते हैं, कभी विरह का दर्द, कभी भक्ति और कभी इंसानियत। उनकी शायरी को पढ़ते हुए लगता है कि वो शब्द नहीं चुनते थे, वो पहले भावना को महसूस करते थे और फिर उसे शब्द दे देते थे।

1957 में आई महबूब खान की ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया, संगीत नौशाद जी का और गीत शकील बदायूनी जी के। यहाँ शकील जी ने प्रेम और रोमांस से आगे बढ़कर गांव, किसान, मेहनत और भारतीय मिट्टी की भावनाओं को गीतों में उतार दिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और इस गीत में जीवन की मजबूरी और संघर्ष है तो दुख भरे दिन बीते रे भैया में ग्रामीण जीवन की थकान के साथ साथ उम्मीद भी है। और फिर होली आई रे कन्हाई, जिसमें लोक संस्कृति की रंगीन तस्वीर दिखाई देती है। शकील जी की भाषा को परिस्थिति के मुताबिक बदलना जानते थे। जी हाँ, वो भाषा के जादूगर थे। जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ उर्दू की नज़ाकत, जहाँ कहानी ने मांगा वहाँ देसी बोलियों की मिठास। यही वजह है कि उनके गीत फिल्म के पात्रों के गीत लगते थे, किसी अलग से लिखे गए गीत जैसे नहीं हुआ करते थे। शकील जी का लिखा ये गाना तो रहती दुनिया तक लोगों को जीने का सबक देता ही रहेगा।

अगर शकील बदायूनी जी को मोहब्बत का शायर कहा जाए तो इसमें किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं होगा, क्योंकि प्रेम की खूबसूरती को जिस नज़ाकत से उन्होंने लिखा, वो उनके गीतों की सबसे बड़ी पहचान बनी। 1960 में आई फिल्म चौधरी का चांद का शीर्षक गीत इसका लाजवाब उदाहरण है। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, ये सिर्फ किसी खूबसूरत चेहरे की तारीफ नहीं थी। शकील जी ने महबूब की खूबसूरती को चांद और सूरत से जोड़कर एक ऐसा रोमानी रूप दे दिया जो आज भी सुनते ही जहन में तस्वीर बना देता है। इस गीत ने शकील जी को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार भी दिलाया। इसके बाद लगातार 2 और वर्षों में भी उन्हें यह सम्मान मिला। इस तरह शकील बदायूनी जी लगातार 3 वर्षों तक फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाले संगीतकार बने।

और दोस्तों, फिर आया वो मकाम जहां शकील बदायूनी जी की कलम ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। जी हाँ, वो फिल्म थी मुगले आजम। जी, मुगले आजम। और ये आई थी 1960 की। इस ऐतिहासिक फिल्म के संगीतकार नौशाद जी थे और गीतकार शकील बदायूनी जी। प्यार किया तो डरना क्या, ये गीत सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं था, ये एक प्रेमिका की आवाज़ में समाज और सत्ता के सामने अपने प्यार को स्वीकार करने की हिम्मत थी, वो भी उस जमाने में। इसके अलावा मोहे पनघट पे नंदलाल, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, बेकस पे करम कीजिए और प्रेम जोगन मन के जैसे गीतों ने इस फिल्म के संगीत को अमर बना दिया। शकील जी ने एक ही फिल्म में प्रेम, भक्ति, सूफियाना भाव, शास्त्रीयता और दरबारी अंदाज हर रंग को शब्द दिए। यही वजह है कि मुगले आजम को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत की एक विरासत माना जाता है।

दोस्तों, शकील बदायूनी जी का हुनर सिर्फ नौशाद जी के साथ उनकी साझेदारी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कई दूसरे बड़े संगीतकारों के साथ भी काम किया। संगीतकार रवि के साथ उनकी जोड़ी ने घराना, चौदहवीं का चांद, घूंघट, गृहस्थी, फूल और पत्थर और दो बदन जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिए। संगीतकार हेमंत कुमार जी के साथ साहिब बीबी और गुलाम और 20 साल बाद जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार गीत लिखे। कहीं दीप जले कहीं दिल ने भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो कहानी के किरदार और माहौल के हिसाब से भाषा बदल देते थे। गंगा जमुना में उन्होंने भोजपुरी रंग का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी फिल्मों में उर्दू की नज़ाकत दिखाई। यानी शकील जी सिर्फ गीत नहीं लिखते थे, वो फिल्म के वातावरण को शब्दों में रच डालते थे।

दोस्तों, हर महान कलाकार की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है जब शोहरत के बीच इंसान को अपनी निजी तकलीफ़ों से लड़ना ही पड़ता है। शकील बदायूनी जी के जीवन की आखिरी वर्षों में उनके ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में उन्हें तपेदिक यानी टीबी की बीमारी ने घेर लिया था। इलाज के लिए उन्हें पंचगनी के एक सैनिटोरियम में रखा गया, लेकिन बीमारी उनकी कलम को रोक नहीं सकी। उनके सबसे करीबी साथियों में से एक नौशाद जी ने उस मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। बताया जाता है कि नौशाद जी उनके लिए फिल्मों के काम लेकर सैनिटोरियम तक गए और उनके आर्थिक हालात को देखते हुए उन्हें सामान्य पारिश्रमिक से बहुत अधिक भुगतान दिलवाया। इस दौर में राम और श्याम, आदमी और संघर्ष जैसी फिल्मों के गीतों पर भी शकील जी ने काम किया। ये दोस्ती हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया की उन कहानियों में से है जहां कामयाबी से कहीं बड़ी चीज़ इंसानियत दिखाई देती है।

20 अप्रैल 1970 को मुंबई में शकील बदायूनी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सिर्फ 54 वर्ष के थे। एक ऐसी ज़िंदगी जो बदायूं से शुरू हुई थी और मुंबई के फिल्मी संसार तक पहुंची। एक ऐसा सफ़र जिसमें सरकारी नौकरी भी आई, मुशायरे भी आए, नौशाद जी की दोस्ती भी आई, फिल्मी गीतों की बेशुमार कामयाबी भी आई और आखिरी दिनों की बीमारी भी। लेकिन किसी शायर की असली ज़िंदगी उसकी उम्र से नहीं, उसके शब्दों से मापी जाती है। शकील जी ने लगभग 9 दशकों में करीब 2 दर्जन फिल्मों के सफ़र में सैकड़ों गीत लिखे। अपनी शायरी से हिंदी सिनेमा को ऐसी विरासत दी जो आज भी जिंदा है। चौधरी का चांद, प्यार किया तो डरना क्या, मन तड़पत, हरिदर्शन को आज सुहानी रात ढल चुकी है और न जाने कैसे कितने कितने गीत उन्होंने लिख दिए। उनकी शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उसमें मोहब्बत थी, मगर मोहब्बत के साथ इंसानियत भी। शकील बदायूनी जी चले गए, मगर उनके गीत आज भी हमें यही एहसास कराते हैं कि अच्छे शब्द कभी नहीं मरते। यही था हमारा आज का सुरों का सफ़रनामा, शकील बदायूनी जी को समर्पित।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें।

0: जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है, बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने कल बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गदेरी नदी के तेज बहाव में फंसे 9 लोगों को पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। 22 अगस्त को भारी बारिश के कारण गुफाओं वाले इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल के जवान तेज बहाव के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव के बाद उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सुरक्षित पाए जाने पर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
0: हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। और दोस्तों ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें हम उस जमाने की गीत आपको सुनाते हैं जो बहुत ही सुनहरा दौर था संगीत की दुनिया का। उस वक्त के जो गीत थे वो इतने प्यारे होते थे जो दिल में उतर जाते थे, और उन्हें हम बिल्कुल ऐसे महसूस कर सकते थे जैसे वो हमारे दिल की बात हो। ऐसा ही एक बहुत ही पुराना और प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है ग्राम कन्या और इसमें आवाज़ दी है सुरेंद्र एलियाराम शर्मा जी ने। सुरेंद्र रलिया राम शर्मा जी।

पुराने गानों का ये जो संग्रह है आकाशवाणी के पास है, ये सच में किसी खजाने से कम नहीं है। और अब वो आवाज़ हम आपको सुनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पुराने संगीत प्रेमी इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, उस नाम से KL सहगल साहब। उनकी फिल्म जो आई थी 1939 में, फिल्म का नाम है दुश्मन।

और दोस्तों, ये जिस ज़माने के गाने अभी आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर, उस ज़माने में हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और अभी जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं, वो फिल्म आई थी 1943 में, यानी 1943 में, और फिल्म का नाम है हॉस्पिटल, और इसको आवाज़ दी है कानन देवी जी ने। आइए सुनते हैं इतने सालों पुराना ये प्यारा सा गीत।

और लीजिए प्रस्तुत है केएल सहगल साहब की आवाज़ में ही एक और गीत जिस की फिल्म आई थी 1943 में, यानी 1943 में। फिल्म का नाम है तानसेन।

और दोस्तों आइए अब सुनते हैं फिल्म दास्तान से ये गाना, जिसे आवाज़ दी सुरैया जी ने और रफ़ी साहब ने। और ये भी बहुत ही पुरानी फिल्म है, 1950 के दशक में आई थी। और पुराने गीतों को सुनने के बाद, उनको एहसास करने के बाद ये पता चलता है दोस्तों कि प्यार की सूरत तब भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन ज़रूरत बस इतनी सी है कि प्यार सच्चा होना चाहिए।

दोस्तों, दिल को बहलाने के लिए ही हम लेकर आते हैं आपके लिए 24 घंटे ऐसे कार्यक्रम जिन्हें सुनकर आपका दिल हमेशा ऐसी यादों के साथ जुड़ा रहे, जो आपके अपने वो सारे गम भुला दे, वो सारी परेशानियां भुला दे जिन्हें आप कहीं ना कहीं याद करते हैं। बस आप सुनते रहिए हमारे साथ और यूं ही जुड़े रहिए।

और अगला गाना जो हम आपके पास भेज रहे हैं उसके लिए बस एक शेर कहना चाहेंगे, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, रात होती है तो आँखों में उतर आता है।

दोस्तों, लता मंगेशकर जी की प्यारी सी आवाज़ के बाद आइए सुनते हैं राजकुमारी जी को। फिल्म है बावरे नैन और ये फिल्म आई थी 1950 में।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं वो फिल्म, उस फिल्म का नाम है बंदिश। ये फिल्म आई थी 1955 में, और दोस्तों ये आवाज़ 1955 से पहले भी

दोस्तों रफ़ी साहब ने हर गाने में, हर किरदार में, हर उसमें सांस फूंक दी, उसमें जान फूंक दी। सच में रफ़ी साहब का कोई तोड़ न कभी हुआ था, न कभी होगा, नहीं रहती दुनिया तक, रहती दुनिया तक रफ़ी साहब का कोई भी एक उनकी तस्वीर भी नहीं बन सकता। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक प्यारी सी आवाज़ आप तक आने वाली है, और उस आवाज़ को आप तक पहुंचाने से पहले एक प्यारा सा शेर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मेरी दुआओं की कबूलियत का यकीन तो देखो, मेरी दुआओं की कबूलियत का यकीन तो देखो, हाथ उठाए नहीं और वो सामने आ गए।

नजर मिली भी नहीं और वो दिल चुरा ले गए, धड़कने भी चुरा ली और हम देखते रह गए। और कुछ ऐसे ही।

रात भर जागती हूँ इस आस में, ख्वाब में ही सही साजन मिले इस प्यास में। रात भर जागती हूँ इस आस में, ख्वाब में ही सही साजन मिले पास में।

प्यार हुआ, इकरार हुआ, दिल को किसी का इंतज़ार हुआ, नज़रें मिली हैं जब से उनसे, ये दिल उन्हीं पर निसार हुआ।

0: फिर भी रहेंगे निशानियां।
1: पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत सुनहरे अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के

0: दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। सांची सब पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार और पार्सल जैसी सेवाएं मिलेंगी। लोग डाक और वित्तीय सेवाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क नहीं देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मूज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मूज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research has clarified that no new strain of H1N1 commonly known as swine flu has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे गीत बहार, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत

0: सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुरुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुरुनुरु में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे समावेशी राष्ट्रीय विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The National Skill Development Corporation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1 lakh

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन लेकर आया हूँ गज़ल गीत कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे आज बेहद प्यारी और कुछ चुनिंदा गीत, बेहद प्यारी गज़लों के साथ कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बाजार की इस प्यारी सी गज़ल के साथ, जिसमें स्वर लता मंगेशकर का है।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

0: इसी के साथ ही गीत गजल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। माफ कीजिए, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। नाद ब्रह्म कार्यक्रम में अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत प्रस्तुति तालावाद्य कचेरी की, साथ में येल्ला वेंकटेश्वरा राव तालम आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 और ठीक 23 सेकंड हुए हैं।

इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हमारी प्रातःकालीन सेवा में आरंभ होने वाले कार्यक्रमों का हम आपको विवरण दे दें। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होती है प्रातः 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। उसके उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार।

6:10 का समय कार्यक्रम वंदना का है और 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।

6:45 पर रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 27 आप सुनेंगे 6:45 पर। छह बजकर पचपन मिनट पर आप सुन सकते हैं संस्कृत समाचार। प्रातः 7 बजे हिंदी समाचार होंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं संगीत का कार्यक्रम और गीतों भरी का समय 7:30 है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः।